मीडियम वेव 396.8 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, आज मंगलवार है। शक सवत 1948 के भाद्रपद मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 8 सितंबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। समाचार कुछ ही पलों में अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 66.6
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

0: अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत के स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने नई दिल्ली के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा। वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम आरंभ करते हैं समूह स्वर में मातृवंदना के साथ। हम भारत के वासी हैं, हमारा एक एक कदम अब प्रगति की दिशा में बढ़ चला है।

आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण के स्वर में श्री हनुमान जी की वंदना। जय जय जय हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई।

रुक्र का समापन हम कर रहे हैं लालित्या मुंशाओं के गाए भजन के साथ। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
0: प्रस्तुत है आज का चिंतन।
2: बिना जल सिंचन के कली कभी खिलती नहीं, श्रद्धा रहित अर्चना कभी फलती नहीं। बता रहा इतिहास भी यह रहस्य भारी कि धर्माचरण के बिना सिद्धि मिलती नहीं, कि धर्माचरण के बिना सिद्धि मिलती नहीं। एक वृक्ष हरा भरा, तूफान का दौर चला और वृक्ष धराशायी हो गया, उसका जड़ से उन्मूलन हो गया। जड़ से हुए टूटे हुए हरे भरे वृक्ष का वैभव और आयुष्य कितना, उस वृक्ष पर रहे हुए हरे पत्तों का आयुष्य कितना, आकर्षक लंबी लंबी शाखाओं की जिंदगी कितनी। भले ही वातावरण में वसंत ऋतु की ताजगी हो, भले ही बादल धरती पर झिरमिर झिरमिर बरस रहे हों, जहां वृक्ष पड़ा हुआ है वहां की भूमि भी उपजाऊ हो, तो भी उस वृक्ष को कोई लाभ नहीं, क्योंकि वह जड़ से संबंध खो बैठा है। बस वैसी ही स्थिति बनती है धर्म रूपी जड़ को छोड़कर, मात्र संपत्ति वैभव समृद्धि रूपी शाखा पत्ती को पकड़कर बैठने वाले जीव की। भले ही आपके पास तंदुरुस्त शरीर हो, करोड़ों की संपत्ति हो, विनीत परिवार हो, समाज में धन वैभव के कारण प्रतिष्ठा हो, 5 गाड़ियां 6 फैक्ट्रियां हो, 3-4 दुकानें चल रही हो, लेकिन इस सभी के मूल स्थान पर रहे हुए धर्म तत्व के साथ संबंध तोड़ दिया तो उसका भावी जीवन अंधकारमय है। वृक्ष की तंदुरुस्ती का कारण, उसके हरे भरे पत्तों का कारण उसकी जड़ है, यह हमको दिखता है। इमारत की मजबूती का कारण उसकी नींव है, यह हमारी समझ में आता है। शरीर की स्वस्थता का कारण नियमित संयमित जीवन व पथ्य पालन है, इसका भी हमको अनुभव है। लेकिन इस तमाम सुख समृद्धि का कारण धर्म न हमको दिखता है, न ही समझ में आता है एवं न ही अनुभव होता है। सुख के मूल स्वरूप संपत्ति को स्वीकारने के लिए, पुरुषार्थ को मानने के लिए एवं स्वयं की व्यवहार कुशलता को यश देने के लिए हम तैयार हैं, किंतु मूल में रहे हुए धर्म को स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि वह धर्म हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। सुख के मूल में धर्म तत्व है, इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करने वालों से इतना ही पूछना है कि शक्कर में मिठास है वह हमें दिखती है, मगर इससे शक्कर के मीठापन से इनकार नहीं किया जा सकता। मक्खन से घी बनने की संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लकड़ी में छिपी हुई अग्नि में हमें दिखती तो नहीं, क्या हम उसमें रही हुई अग्नि को नहीं मानेंगे? अरे भाई, कुछ समझदार बन, आंख और मन की समझ की मर्यादा को सतत सामने रख। प्रश्न उठता है, धर्म है क्या? ज्ञानियों ने इसका समाधान दिया, धम्मो वत्थु सहावो खम्मादि भावो या दस्वियो धम्मो। धर्म वस्तु का स्वभाव है, व्यवहार से क्षमा निर्लोभता सरलता सत्य आदि सद्गुणों की अपेक्षा से उसे 10 प्रकार का बताया है, जिसे यति धर्म के नाम से भी जाना जाता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रयी की दृष्टि में धर्म 3 प्रकार का बतलाया है। आत्मा का निज गुण है वह धर्म है, और पुद्गुलों का जो स्वभाव है वह आत्मा के लिए धर्म नहीं है, वह विभाव है और वही अधर्म है। स्वभाव है वह सदा बना रहता है, और जो विभाव है वह सदा नहीं बना रहता। पानी को गर्म करने पर भी वह हमेशा गर्म नहीं रहता, क्योंकि पानी का स्वभाव है शीतलता जो हमेशा बनी रहती है, मात्र अग्नि के कारण उसमें उष्णता आती है, वह कुछ समय पुनः वह शीतल बन जाता है। वैसे ही क्रोधादि भाव कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं, वे आत्म स्वभाव नहीं है किंतु विभाव दशा है। आप ही सोचिए, क्रोध में आपने कितने समय तक रह सकते हैं, मगर समता भाव जो कि आत्मा का स्वभाव है उसमें आप शांति से घंटों रह सकते हैं। भगवान महावीर के प्रिय शिष्य गौतम ने जिज्ञासा प्रस्तुत की, प्रभु आत्मा का स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, क्रोध कसाय आदि आत्मा के स्वभाव हैं या समता आदि? समाधान में महावीर ने कहा, समता ही आत्मा का स्वभाव है, न कि क्रोध कसाय। समत्व को प्राप्त करना ही आत्मस्वरूप को प्राप्त करना है। आधुनिक युग के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड का भी यही मंतव्य है कि चेतन जीव का स्वभाव है कि वह विक्षोभ और तनाव को नष्ट कर समत्व की संस्थापना करता है। दोस्तों, हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आत्मा का स्वभाव धर्म है, और यदि धर्म हमें निश्चय ही क्रोध कसाय से दूर कर समभाव में जीने का मार्ग बताएगा। आज के इस युग में जहाँ जीवन तनाव चिंताओं से घिरा हुआ है, उससे मुक्ति पाने का मात्र एक मार्ग है, धर्म का मार्ग। चाहे आप पास कितनी संपत्ति हो, मगर धर्म का आचरण आवश्यक है। धर्म की राह पर चलकर सुखमय शांतिमय जीवन जिए।

0: कल्याण इसमें नहीं है भरम।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख और स्वर था के श्री चंद पारक का, मीडियम वेव और एफएम वेंट पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर है ए हरिहरण का, संगीत सतीश भाटिया का है।

पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्ग लोक में सुयश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देवलोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हो आया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे, किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो, हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुष भंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिख पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हो आया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे, किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो, हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुष भंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिख पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम वहां आ पहुंचे।

0: अभी श्री रामचरितमानस के गायन का प्रसारण किया गया। स्वर था ए हरिहरन का, संगीत सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि सामयिकी बेड़ा खड़ा चुगोट।
1: किसान भाई बहन मन, आज हम तुमके संग से राहड़दार फसल से कमानी कसन करतो रहे। राहड़दार ने प्रोटीन जुगे हुआ है। प्रोटीन चो कमी हो रोने आमचो देह और दिमाग चो बढ़ती नगद नहीं हुए। आमचो किसान भाई बहन राहड़ चो कमानी नगद करुआत और दूसर कमानी संगे बले एचो मिश्रा कमानी करुआत। राहड़ चो कमानी ले माटी चो कटाव नहीं हुए, भूई नगद हुआ है। राहड़ चो कमानी ले दार संगे दारू बले मिरुआ है। राहड़ ओल और सूखा बुटा है। राहड़ बुटा के बाड़ तो काजे ओल होतर जरूरी है और फूल फर काजे सूखा होतर जरूरी है। खूबे वर्षा बाटे राहड़ चो कमानी करतर नु है। राहड़ चो नंगत उपजन काजे बारू बीती दुई मटिया भूई नंगत आए। नंगत पानी निकास बीती भूई एचो कमानी काजे नंगत हुआ है। करिया माटी ने बले एचो कमानी नंगत हुआ है। जेठ बेरा बेड़ा के देसी नांगर ले दुई तीन हार जोत तो राय, पाछे गोबर खाद देउन पाटा चलाउन देतो राय। राहड़ चो अक्ती किसम मनाए गोटोकाय पारस। ये जून महीना चो पहल हफ्ता ने बुनतो राय। ये किसम 130 ले 140 दिन ने पाकुन तैयार हुआ है। अढ़ाई एकड़ ने 18 ले 20 क्विंटल तक उपजन हुआ है। दूसर अक्ति की समय पूसा 992 ये किस्म के जून महीना ने बुनतो राय। ये किस्म ने उगटा रोग नहीं हुए और 150 ले 160 दिन ने पाकुन भाती तैयार हुआ है। अढ़ाई एकड़ ने 15 ले 20 क्विंटल उपजन मिरुआ है। असने अक्ति की समय टा 21 ये किस्म 160 ले 130 दिन ने पाकुन तैयार हुआ है। अढ़ाई एकड़ ने 15 ले 20 क्विंटल तक उपजन मिरुआ है। गोटोक किस्माय उपास 120 ये किस्म के भाटा बाटे जुगे बुनुआत। ये दूसर अक्ति किसम मन ले झपके पकुआ है और 130 ले 140 दिन ने पाकुन भाती तैयार हुआ है। अढ़ाई एकड़ ने 15 ले 20 क्विंटल उपजन मिरुआ है। एके तो आमी सांगलू अक्ति किसम मन के अदाय आमी सांगुंदे देरी ले पाकतो बीती किसम मन। देरी ले बुनलो बीती किसम मन असन तो 260 ले 280 दिन ने पकुआ है। मांतर ए मन आगर उपजन देवात जसन 25 ले 30 क्विंटल उपजन अढ़ाई एकड़ ने मिरुआ है। देरी ले पाकतो बीती किसम मन आए बहार अमर नरेंद्र अरहर 1 नरेंद्र अरहर 2 पूसा 9 मालवीय विकास मालवीय चमत्कार ये किसम मन ने बांझा रोग और उगटा रोग नहीं हुए। राहड़ के कसम समय ने बुनतो राय बनलो ने राहड़ चो आगर उपजन काजे वैज्ञानिक तरीका ले कमानी करतो राय। अक्ति किसम मन चो बुनाई सिंचाई करतो बाटे जून महीना तक और देरी ले पाकतो बीती किसम मन चो बुनाई जुलाई महीना ने करतो राय। पारी मन ने बुनलो ने नगद उपजन मिरुआ। बीज उपचार कसन करतो राय बनलो ने एक किलो बीज के 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बोंडा जीम चो मिश्रण ले उपचार करतो राय। बुनतो पहल बीज के राइबोजियम कल्चर ले उपचारित करतो राय। एक पैकेट राइजोबियम कल्चर के 10 किलो बीज ने ऊपर ले छिछुन हाथे मिसातो राय और ए बीज के तुरते बुनतो राय। जोन बाटे आमी पहल हार राहड़ बुनलू से उसन बाटे ए दवाई के जरूर उपयोग करतो राय। नांगर पाट कुत्ती कूड़ा ने बुनतो राय। किसम और लेहरा पानी के दखुन बीज बुनतो राय। बुनाई चो 20-25 दिन पाछे बूटा मंच दूरी बनातो राय। अक्ति किसम काजे 12 ले 15 किलो बीज अढ़ाई एकड़ ने नगत हो से और देरी ले पाकतो बीती किसम मन 15 ले 18 क्विंटल अढ़ाई एकड़ ने लागे से खत भात कसन देतो राय बल्लो ने। राहड़दार चो नगत उपजन काजे 10 ले 15 किलोग्राम नत्रजन 40 ले 45 किलोग्राम फॉस्फोरस और 20 किलोग्राम सल्फर अढ़ाई एकड़ ने लागे से। अगर उपजन काजे सिंगल सुपर फॉस्फेट अमोनियम फॉस्फेट देतो राय। राहड़ जो कई किस्म मन पलाहा और कई किस्म मन के बरसा दाए बुनतो राय। बेड़ा ने ओल कम रलो ने फर हो तो दाए अक्टूबर महीना ने 1 हार पानी जरूर देतो राय। देरी ले पाकतो बीती किस्म मन ने दिसंबर जनवरी महीना ने सिंचाई करतो राय। राहड़दार चो फसल ने ओसार पाना बीती लाटा बूटा मन के मरला तो काजे इलाक्लोर 50 WPC लासो 4-5 किलो के बुनाई चो 2 दिन ने देतो राय।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामयिकी की बेड़ा खड़ा चुगोट। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हुलहुली कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जलनी माता पाठ। वादक कलाकार हैं गणपति कड़ियारी और साथी।

और होली कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जलनी माता पाड़। वादक कलाकार थे गणपति कड़ियारी और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, आज सुबह 8:30 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी साहित्य पत्रिका मोर भुइयां, और सुबह 10 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ देर बाद सुबह 7:05 पर सुनिएगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आकर्षण होंगे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम पत्रांकन, और होगी सुमधुर फिल्मी गीतों से सजी मधुरिमा। सुबह 9 सुनेगा रूपक मीत मैथर का दूसरा भाग। लेखक होंगे तुलसी राम मौर्य, प्रस्तुति होगी बलबीर सिंह कच्छ की। सुबह 9:30

पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म होगी विश्वास। गुरुदम कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर सुनिएगा निर्वती और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। सुबह 11 बजे सुनिएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का हमारा एक कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायिका आशा भोसले पर। सुबह 11:30 पर सुनिएगा लोकवाद्य धुनों का कार्यक्रम पाड़। इसमें आज आप सुनेंगे रसिया डोकरा पाड़। वादक कलाकार होंगे गणपति कड़ियारी और साथी। दोपहर 12 बजे हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम कला और कलाकार। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार प्रसारित किया जाएगा दोपहर 12:30 पर। मेड़ा खड़ा चौकोट का पुनः प्रसारण होगा दोपहर 1:05 पर। फरमाइशी फिल्मी गीत सुने जा सकते हैं कार्यक्रम श्रोता सुमन में दोपहर 1:10 पर। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रसारण किया जाएगा दोपहर 2:30 पर। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5:05 पर सुनिएगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। युवा साथी सुन सकते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। शाम 6:35 पर हम आपको सुनवाएंगे मुरही बाई और साथियों के स्वर में जगार गीत। हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर आप सुन सकते हैं शाम 7:21 पर। हम लेकर आएंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8 बजे सुनेगा कार्यक्रम शिक्षकों के लिए। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं वार्ता कंप्यूटर शिक्षा का महत्व। वार्ताकार होंगे अनिल शर्मा। रात 8:30 पर सुनेगा कार्यक्रम पीला मन का जय गोट। पुरानी फिल्मों से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:15 पर। रात 9:30 पर सुनेगा फरमाइशी लोक गीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत। और रात 10 बजे सुनेगा लोकवाद्य धुनों का कार्यक्रम पाड़। वादक कलाकार होंगे श्रीधर और साथी। श्रोताओं हम आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से, जिसमें आज की फिल्म होगी विश्वास। और सुबह 11 बजे कार्यक्रम एक ही कलाकार आप सुनेंगे, जिसमें आज का हमारा कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायिका आशा भोसले पर। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत और हिंदी में समाचार क्रमशः अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का लोकार्पण भी किया जाएगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये विशाल परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की शुरुआत भी करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026

0: उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन पर चर्चा होगी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल परिषद की बैठक में यह मंजूरी दी गई। बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मैरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। वायुसेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% खरीद भारतीय कंपनियों से की जाएगी। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध हैं। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्कन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघी ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। 6G नेटवर्क के विकास और वैश्विक पहल में भारत अब अमरीका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। इस पहल का उद्देश्य 6G नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने अमरीकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटकनिक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने 6G के साथ सेमीकंडक्टर, AI और डेटा सेंटर के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। बरेली, एटा, शाहजहांपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी देश में सबसे अधिक वर्षा वाले 5 जिलों में शामिल हैं। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में भावना और पूजा का सामना चीन से होगा। भारत की पुरुष पैरा रिकर्व टीम फाइनल में स्लोवाकिया से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और FM वेंट पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

श्रोताओं, आज 8 सितंबर है। आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा 17 नवंबर सन 1965 को यूनेस्को द्वारा की गई और पहली बार इसे 8 सितंबर सन 1966 में मनाया गया। इसके लिए हर वर्ष थीम निर्धारित की जाती है। श्रोताओं, इस वर्ष इस दिवस के लिए थीम निर्धारित की गई है, लिटरेसी फॉर पीपल द प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी लोगों के लिए, पृथ्वी के लिए और समृद्धि के लिए साक्षरता। श्रोताओं, साक्षरता केवल पढ़ना लिखना सीखना नहीं है, बल्कि ये शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक विकास की नींव है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के हर व्यक्ति तक शिक्षा का प्रकाश पहुंचाना और निरक्षरता को खत्म करना है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि एक साक्षर समाज ही देश को मजबूत और समृद्ध बना सकता है। आइए हम भी हमारे आसपास के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने की दिशा में यथासंभव प्रयास करें, ताकि दीप से दीप जलते रहें।

0: श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था संत ज्ञानेश्वर फिल्म से। आवाज थी लता मंगेशकर की, गीत रचना भरत व्यास की थी, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: श्रोताओं, नमस्कार जगदलपुर के अगले क्रम में अब बारी है पत्रांकन की। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम पत्रांकन। आज पत्रांकन में प्रस्तुति है धर्मदीप डोंगरे और गायत्री आचार्य की।

0: कार्यक्रम पत्रांकन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है और कार्यक्रम पत्रांकन लेकर हम हाजिर है। मैं धर्मदीप डोंगरे
1: और मैं गायत्री आचार्य।
0: आप सभी को हमारा नमस्कार। तो श्रोताओं, आज का पत्रांकन कार्यक्रम का यह अंक लेकर हम स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं और गायत्री जी जो संदेश है वो पढ़ना स्टार्ट कर रही है। गायत्री जी, आप सबसे पहले संदेश किनका आया है, पढ़िए
1: जी। हमारे जो श्रोता हैं उन्हें बहुत ही इंतजार रहता है सर पत्रांकन कार्यक्रम का, तो आज हम पहला पत्र ले रहे हैं, वो है बालोद छत्तीसगढ़ से। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहरा के श्रोता हैं ये देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर। ये लिखते हैं कि प्रस्तुतकर्ताओं को सप्रेम नमस्कार और सादर अभिवादन। आकाशवाणी जगदलपुर का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हमारा बस्तर। इसी क्रम में 30 अगस्त को राव डोंगर पर बहुत ही सुंदर जानकारी मिली। ये आगे लिखते हैं कि जो बातें बताई गई वो हमारे मन में इस क्षेत्र पर मन भावन अकल्पनीय चित्र उभर रहे थे। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए इन्होंने हमारे जो सीनियर अनाउंसर थे नारायण सिंह बघेल और बलबीर सिंह कच्छ जी को इन्होंने साधुवाद कहा है और बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जो इन्हें जानकारी मिली तो इसके लिए उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने हमारा बस्तर कार्यक्रम को बेहद पसंद किया है।
0: सबसे पहले तो कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा से जो हमें संदेश भेजे हैं तामुरिया परिवार से, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने अपना समय निकालकर संदेश भेजा है। आकाशवाणी जगदलपुर का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हमारा बस्तर, जो रविवार को प्रसारित किया जाता है, जो सुंदर प्रस्तुति के लिए आपने नारायण सिंह बघेल और बलवीर जी कच्छ को साधुवाद कहा है, तो आपका अभिवादन है। हम नारायण जी और बलवीर सिंह कच्छ सर के पास हम प्रेषित कर देंगे। बहरहाल, संदेश भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री जी, दूसरा संदेश पढ़िए
1: जी। ये दूसरा पत्र हमने लिया है ग्राम बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के योगेश सारवा का। ये संदेश है इनका और ये लिखते हैं कि एक ही कलाकार में प्रसिद्ध अभिनेता जिन्होंने हर तरह से चरित्र भूमिका निर्वहन करते हुए फिल्म बॉबी से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले और अनेक फिल्मों में बेहतरीन किरदार करने वाले, मगर अपने अंतिम दिनों में फिल्म अग्निपथ के रिमिक्स में एक नेगेटिव भूमिका रऊफ लाला की बेहतरीन जानदार भूमिका करने वाले ऐसे अद्भुत कलाकार ऋषि कपूर को विनम्र श्रद्धांजलि इन्होंने अर्पित

0: क्या है, और ये लिखते हैं कि आकाशवाणी जगदलपुर में इन्हीं कलाकार पर कार्यक्रम एक ही कलाकार प्रस्तुत किया गया, रूपाली सेठिया जी ने प्रस्तुत किया था, और जो श्रोता सुमन कार्यक्रम पेश किया गया इसी दिन, तो इन्हें बेहद पसंद आया। इसके लिए उन्होंने जो उद्घोषक हैं रूपाली सेठिया, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भेजी है।
1: संदेश भेजने के लिए योगेश सरवा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संदेश के माध्यम से जो कार्यक्रम सुना, एक ही कलाकार खासकर जिसमें अभिनेता के किरदार को आपने जो प्रस्तुत किया गया हमारे उद्घोषक साथी रूपाली सेठिया जी के द्वारा प्रस्तुति दी गई थी, और साथ में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्रोता सुमन कार्यक्रम में प्रेषित किया, वो आपको बहुत बढ़िया लगा। सुनकर हमें भी अच्छा लग रहा है और आपके पत्र पढ़ते हुए भी हमको आनंद की अनुभूति हो रही है। बहरहाल अच्छे पत्र और अच्छे संदेश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये अगला संदेश है मेघापारा लोरमी से कृष्ण धनंजय गायत्री मनोज कुमार साहू के। सर, इन्होंने कुछ मुहावरे भी हमें लिख भेजा है जो
1: जी,
0: बहुत ही सुंदर है।
1: इसको।
0: वृद्ध के पैर दबाने से बहुत सारी जानकारी सहज ही मिल जाती है। बंदर तो सब देखे हैं, पर पालतू बंदरों को छोड़कर अन्य बंदरों को वृद्ध होकर प्रकृति प्राण त्यागते कम ही लोग देखे होंगे। कहते हैं कि जब वे वृद्ध होते हैं तो अपना शरीर ऐसी जगह में त्यागते हैं जहां दीमक या चींटियां अपना भंडारा बना सकें। बेजुबान की इतनी अच्छी सोच हो सकती है, तो बुद्धिजीवी प्राणी मानव को किसी भ्रांति के भंवर में नहीं फंसना चाहिए। मृत्यु लोक में सबको एक दिन धरती की गोद में समाना ही है, तो हमारा ये शरीर कुछ अंग किसी का काम कर सकते हैं, तो इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। इन्होंने नेत्र दान को लेकर के ये भूमिका बांधी है। ये लिखते हैं आगे कि 25 अगस्त को भरत कुमार गंगाधर द्वारा पत्रांकन और मधुरिमा पेश किया गया, जो इन्हें बेहद पसंद आया। ये लिखते हैं कि नेत्रदान पखवाड़े पर इन्होंने जो चर्चा की, इन्हें बहुत अच्छी लगी। और ये लिखते हैं कि सुखेंदु जी ने भी नेत्रदान पखवाड़ा की स्मृति दिलाई थी। स्वास्थ्य की बातें क्रम में डॉक्टर अक्षय पारासर से चंद्र ऋषि जी की जो चर्चा प्रसारित की गई, जिसका विषय था नेत्र का स्वास्थ्य और नेत्र दान, बड़ी प्यारी चर्चा थी। ये आगे संदेश में लिखते हैं कि राष्ट्रीय पेट्रोलियम दिवस पर रानू नाग ने कार्यक्रम पेश किया था, और यातायात नियम की भी बात इन्होंने कही थी, तो ये दोनों ही चर्चा इन्हें बेहद पसंद आई। एक बात ये लिखते हैं कि ये जो ट्रक वाले हैं, जिन पर बहुत ही अच्छा स्लोगन लिखा रहता है, घटना घटी खीर पूड़ी बटी, धीरे चलाओ तो धन्यवाद नहीं तो इलाहाबाद। इन्होंने कुछ मजाकिया मोड में भी जी इन्होंने आगे लिखा है कि तृप्ति जी ने पत्र स्वरूप फूल की पंखुड़ियों को अच्छी बिखेरी, जिसे समेट कर ऋषि जी ने इत्र बनाकर छिड़का, पूरा वातावरण महक गया, सभी को बधाइयां और धन्यवाद।
1: सबसे पहले कृष्ण धनंजय और गायत्री मनोज कुमार साहू जी को इतना सार गर्भित संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने नेत्रदान पखवाड़ा के ऊपर में जो चर्चा लिखी है, 25 अगस्त को पत्रांकन और मधुरिमा के आकर्षण के साथ भरत कुमार गंगाधित्य ने जो समा बांधा था, उन्हें बहुत पसंद आया। इसके अलावा इन्होंने सुखेंदु मलिक जी के बारे में भी लिखा है, क्योंकि इन्होंने भी विस्तृत चर्चा की थी, और स्वास्थ्य की बातें कार्यक्रम में डॉक्टर अक्षय पारासर से चंद्र ऋषि ठाकुर जी की बातचीत भी इन्हें बहुत अच्छी लगी। साथ ही राष्ट्रीय पेट्रोलियम दिवस पर रानू जी ने यातायात रूल्स पालन करने की जो चर्चा की थी, इन्हें बहुत अच्छी लगी। बहरहाल आपने इतना अच्छा संदेश लिखा है, इस संदेश के लिए आपका तहे दिल से आभार।
0: जी, अगला संदेश मैं ले रही हूँ रानीगांव नगरी जिला धमतरी से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू। ये लिखते हैं कि 1 सितंबर को प्रसारित कार्यक्रम बस्तर के स्वर में मंगलू और दसरू द्वारा प्रस्तुति सुनने को मिला। इसके अंतर्गत क्रम लोक लहरी में सुमधुर और कर्णप्रिय गीत हमने सुना, जो हमें बहुत पसंद आया। इसी दिन कार्यक्रम तुचो मंचो गीत लेकर आई थी शिवा सिंह, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों के श्रोताओं को शामिल किया गया। साथ ही हल्बी छत्तीसगढ़ी में लोकगीत सुनने को मिला, जो कि बहुत ही सुमधुर और मंत्रमुग्ध करने वाला लोकगीत था। इस दिन की बेहतरीन प्रस्तुति के लिए इन्होंने दसरू, मंगलू और शिवा सिंह को कोटिशह बधाई प्रेषित की है।
1: सबसे पहले खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू जो संदेश भेजा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लिखा है कि 1 सितंबर को प्रसारित कार्यक्रम बस्तर के स्वर में मंगलू और दसरू द्वारा जो प्रस्तुति सुनने को मिला, आपको बहुत बढ़िया लगा। इसके अलावा आपने हल्बी छत्तीसगढ़ी में जो आपको लोकगीत सुनने को मिले, आपने इसका बहुत आनंद लिया। इसके लिए दसरू, मंगलू और शिवा जी को जो आपने बधाई दी है, हम ये बधाई उन तक प्रेषित कर रहे हैं। बहरहाल अच्छे संदेश के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला संदेश है बड़े डोंगर लक्ष्मण सिंह कोराम, भावना दीपक डुग्गू कोराम का। इन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए लिखा है कि 29 अगस्त को नमस्कार जगदलपुर में एक रूपक प्रसारित की गई थी, जिस

0: शीर्षक था बस्तर में बिखरी है बहार और इसके लेखक थे डॉक्टर सतीश। आगे लिखते हैं कि बस्तर ऐसे ही अनूठी संस्कृति रीति रिवाज परंपराओं को सदियों से निभाती आ रही है, वो आज भी निभाई जा रही है। तेजा जगार, बाली जगार, गोदने गुदवाना, देवी जात्राएं वगैरह वगैरह। बस्तर के भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न रहस्यमय गुफाएं, ऐतिहासिक स्थलें हैं, जहां भी जाएं देखें तो देखते रह जाएं। इन्होंने बस्तर के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है। और आगे लिखते हैं कि रीति रिवाजों को संजोकर डॉक्टर सतीश जी रूपकों में रूप देते हैं, सुनकर इन्हें बेहतर लगता है। और ये आगे लिखते हैं कि रेडियो मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक प्रेरणास्पद बातें खेलों का सीधा प्रसारण हमें देता है। हम खेत में नहीं बल्कि मैदान में मौजूद हैं, ये है रेडियो की अहमियत।
1: जी, सबसे पहले तो हम लक्ष्मण सिंह कोराम, भावना दीपक डुग्गू कोराम जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इतना सार गर्भित संदेश हमें भेजा है। इन्होंने लिखा है 29 अगस्त को नमस्कार जगदलपुर में जो रूपक प्रस्तुत किया गया था, जिसका शीर्षक था बस्तर में बिखरी है बहार, और जिसके लेखक थे डॉक्टर सतीश जी। जो रूपक था, बस्तर की ऐसी अनूठी संस्कृति रीति रिवाज परंपराओं को सदियों से निभाते आ रही है, उसके बारे में आपने विस्तृत से बताया और सुना, सुनकर ही आपने प्रतिक्रिया दी, इसके लिए आपका तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री जी, अगला संदेश किसका है, पढ़िए।
0: ये अगला संदेश हमने लिया है देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल राजा, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री। ये लिखते हैं कि 27 अगस्त को प्रसारित नमस्कार जगदलपुर में नाटक एक शख्स में एड्स बीमारी पर बहुत ही बेहतरीन जानकारी के साथ इसके बचाव के बारे में बताया गया। सुंदर प्रस्तुति इन्हें उपयोगी लगी। इसके लेखक और निर्देशक थे शाहिद हुसैन। इन्हें मधुरिमा के गीत भी बहुत पसंद आए और एक ही फिल्म में मेरा गांव मेरा देश की प्रस्तुति रानू नाग ने दी थी, तो इनके लिए उन्होंने रानू जी को बधाई दी है। और इसी दिन दोपहर को मुकेश चंद्र माथुर पर कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा, एक ही कलाकार कार्यक्रम, और श्रोता सुमन भी रक्षाबंधन के पर्व को लेकर प्रस्तुत किया गया, तो प्रस्तुतकर्ता सुखेंदु मलिक को इन्होंने बहुत सारी बधाई दी है। साथ ही इसी दिन आज के अतिथि में आदरणीय विपिन बिहारी दास जी से नारायण सिंह बघेल की बातचीत भी इन्हें बहुत पसंद आई और एक ही फिल्म से फिल्म संकरा के गीत इन्हें पसंद आए। ये कार्यक्रम 28 अगस्त को प्रसारित किया गया था और प्रस्तुतकर्ता थी मर्सी स्वर्णा रानी, तो इन्होंने मर्सी जी को बधाई दी है अच्छी पेशकश के लिए।
1: जी, सबसे पहले तो हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने समय निकालकर इतना सार गर्भित संदेश भेजा है। इन्होंने 27 अगस्त के बारे में चर्चा की है कि इस दिन जो प्रसारित एक नाटक था जिसके लेखक शाहिद हुसैन जी थे, इस नाटक जो एड्स बीमारी के ऊपर में था
0: जी,
1: इन्हें बहुत पसंद आया। साथ ही इन्होंने उस दिन के कार्यक्रम में मधुरिमा और एक ही फिल्म से कार्यक्रम में मेरा गांव मेरा देश के गीत इन्हें बहुत अच्छे लगे, और जो प्रस्तुतकर्ता थी रानू जी, इन्होंने इनके लिए हार्दिक बधाइयां दी है। हम इनकी जो बधाइयां है इन तक प्रेषित कर दे रहे हैं। इसी दिन दोपहर की सभा में एक ही कलाकार में मुकेश चंद्र माथुर जी पर जानकारी दी गई और उनसे संबंधित गीत सुनवाए गए, इनको बहुत अच्छा लगा। साथ ही रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखकर राखी गीत सुनवाए गए, जिन्हें सुखेंदु मलिक जी ने प्रस्तुति दी थी, और सुखेंदु मलिक जी को भी हम माइक्रोफोन के माध्यम से बधाई संदेश प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन पर्व पर बेहतरीन जानकारी और गीतों की प्रस्तुति से जो सामा बांधा था इन्हें बहुत बढ़िया लगा। साथ ही क्रम आज के अतिथि में आदरणीय विपिन बिहारी दास जी साहित्यकार से नारायण सिंह बघेल की जो बातचीत थी इन्हें बहुत अच्छी लगी, तो हम नारायण सिंह बघेल जी को भी बधाई प्रेषित कर रहे हैं।
0: जी,
1: गायत्री जी अगला पत्र पढ़िए।
0: जी जी, अगला संदेश है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र और रौनक सेन। ये छत्तीसगढ़ी में इन्होंने हमें संदेश लिख भेजा है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि छत्तीसगढ़ी अच्छे से पढ़ सकूं।
1: जी
0: जी, सबसे पहली अवैया तीजा पोरा और गणेश चतुर्थी पर्व के हार्दिक शुभकामना संदेश। देवथन हमर सेन परिवार डहरले, आकाशवाणी जगदलपुर, परिवार लमाया लगा के अमर लेहू भूला हु छन। मया के अचरा मया के डोरी में बड़ ताकत होते, और ये मया के डोरी में जेन एक बेर बंधा जाते तर फिर छोड़ाए ले नहीं छूटे जेन, मया बीच में छूट जाए वो ल मया नहीं कहे जाए, जन्म जन्म गठरी में बंधा जाते उही ल अंतस के मया कहते, और ऐसने ढंग अंतस में बस गे हवे आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम, और यहाँ के बहिनी भैया मन खातिर हम

0: कि यही क्रम में भाई संतोष मलिक जी हमर मायारू छोटे भाई मनिंदर सिंह देवगण जी के संगे संग हमर बहिनी जसबीर कौर रूपाली सेठिया हर्षिता अय्यर हरिप्रिया गायत्री आचार्य सृष्टि श्रीवास्तव मन के मुखारविंद ले अलग अलग दिन में नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम एक ही कलाकार कार्यक्रम संग फोन इन चाहत कार्यक्रम ल सुन के सौभाग्य प्राप्त होइस। और नोने शिवा सिंह और हरिप्रिया के सुंदर सुंदर मधुर आवाज ले मोचो मंचो गीत कार्यक्रम ल सुने हृदय में समागे। ये आगे लिखते हैं कि आकाशवाणी जगदलपुर के का तारीफ औ का बढ़ईकरण समझ से परे हवे। बहरहाल ऐसन सुघर आनंदमय सदाबहार समागम और मनमोहक प्रस्तुति खातिर आकाशवाणी जगदलपुर परिवार ल अंतस ले मया भरे बहुत बहुत धन्यवाद देवथन। परोसंथन ठेठरी खुरमी समझ के जम्मो झन अमर लेहु भुलाहु झनह पुनः धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो हम चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र, रौनक सेन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने तार पूर्वक संदेश लिखकर भेजा है जिसमें छत्तीसगढ़ी की जो बोली है उसमें अपनापन है जो मिठास है उसको लेकर आपने हर तरह से कार्यक्रमों के बारे में, इसके अलावा जो
0: सभी
1: उद्घोषों के बारे में जो अपनी प्रतिक्रिया दी है उससे सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा 25 अगस्त के दिन मंगलवार को नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम के अंतर्गत भरत कुमार जी ने जो नेत्रदान महादान के ऊपर बड़े अच्छे ढंग से जो ज्ञानवर्धक जानकारी दी थी उसके लिए भरत कुमार जी को आपने जो बधाइयां प्रसिद्ध किए हम बधाइयां संदेश उन तक प्रेषित कर रहे हैं। इसके अलावा आपने जो कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं रोज एक ही कलाकार, साथ ही श्रोता सुमन जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं इन्हीं क्रम में जो नाम भेजे हैं उसमें है सुखेंदु मलिक जी, मनिंदर सिंह देवगुन, जसवीर कौर, रूपाली सेठिया, हर्षिता अय्यर, हरिप्रिया, गायत्री आचार्य जी, सृष्टि श्रीवास्तव। आपने अलग अलग दिनों में इनसे जो नमस्कार जगदलपुर एक ही कलाकार जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं साथ ही फोन इन चाहत कार्यक्रम को लेकर जो आपने लिखा है आपने बहुत अच्छा लगा सुनकर और उनके लिए हम सभी को बधाइया संदेश जो है माइक्रोफोन के माध्यम से हम उन्हें प्रेषित कर रहे हैं। बहरहाल विस्तार पूर्वक संदेश भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी सर, इस बार बहुत सारे श्रोताओं ने हमें संदेश भेजा है और अगला जो संदेश है वो जो मैं ले रही हूँ उन्होंने भी बहुत ही विस्तार पूर्वक हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा की है और ये हमारे ये नियमित श्रोता हैं और इसे भेजने वाले हैं रोशन देवांगन बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से।
1: जी
0: आकाशवाणी जगदलपुर के सभी उद्घोषक उद्घोषिका कंपेयर अधिकारी और कर्मचारी गण को राम राम और जय जोहार। माई रेडियो माई लाइफ, रेडियो से मेरा रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे कोई पुराना गीत दिल के बहुत करीब हो जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान और दिल में अपनापन उतर आए। ये लिखते हैं कि आकाशवाणी जगदलपुर मेरे लिए केवल एक रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि आवाजों से बना एक खूबसूरत परिवार है। यहाँ से प्रसारित होने वाला हर कार्यक्रम कभी जानकारी देता है, कभी मनोरंजन करता है, कभी संस्कृति से जोड़ता है और कभी पुराने गीतों की यादों में ले जाता है। आगे लिखते हैं श्रोता सुमन में मनिंदर सिंह देवगुण जी की प्रस्तुति तो सचमुच एकदम फिल्मी अंदाज में दिल जीत गई। फिल्म एक दूजे के लिए का गीत चला गया मेरा जीवन साथी और उसमें 30 से अधिक फिल्मों के नामों को जिस खूबसूरती से पिरोया गया वो सुनकर लगा जैसे गीत नहीं बल्कि फिल्मों की पूरी बारात रेडियो पर निकल पड़ी हो। इन्होंने मनिंदर सिंह देवगुण जी की प्रस्तुति को काफी सराहा है और उन्हें लिखा है कि सुनकर हमें बहुत ही मजा आया, ऐसी प्रस्तुति के लिए उन्हें दिल से सलाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे लिखते हैं कि रानू नाग की प्रस्तुति भी कमाल की रही। पत्थर के फूल का गीत कभी तू छलिया लगता है और उसमें 40 अधिक फिल्मों के शीर्षकों को गीत की पंक्तियों में पिरोया, वाह गीत चलता रहा और श्रोता मन ही मन फिल्मों के नाम खोजते रहे। जैसे रेडियो पर गीत भी चल रहा है और फिल्मों की पहली भी। इन्होंने रानू नाग को भी दिल से धन्यवाद कहा है रोचक और मनोरंजक प्रस्तुति के लिए। आगे और लिखते हैं कि आकाशवाणी जगदलपुर के सभी उद्घोषक उद्घोषिका कंपेयर अधिकारी कर्मचारी गण, आप सब की आवाजों में अलग अलग रंग हैं लेकिन मंजिल एक ही है। श्रोताओं के दिल तक पहुंचना किसी की आवाज में अपनापन है, किसी के अंदाज में मिठास है, किसी की प्रस्तुति में ज्ञान है तो किसी की बातों में मनोरंजन की फुहार है। इसलिए तो आकाशवाणी केवल रेडियो नहीं लगता, ये श्रोताओं का अपना घर और अपनी आवाज लगता है।
1: मैडम इन्होंने तो इतना सार गर्भित संदेश भेजा है रोशन देवांगन बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़।

0: थी। इनको सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया दी है, जिसमें आकाशवाणी जगदलपुर के जो सभी उद्घोषक है, उद्घोषिका है, कंपियर है, अधिकारीगण है, कर्मचारीगण है, सबको उन्होंने नमस्कार कहा है। तो हमारी तरफ से भी राम राम एवं जय जोहार। इसके अलावा उन्होंने लिखा है माई रेडियो माई लाइफ, उन्होंने
1: बहुत अच्छी
0: भावनाएं व्यक्त की है।
1: जी
0: मनिंदर सिंह देवगुन जी की जो प्रस्तुति थी, खासकर श्रोता सुमन में, उसमें जो लिखा है आपने कि एक फिल्म एक दूजे के लिए गीत चला था, चला गया मेरे जीवन साथी, उसमें क्या है 30 से अधिक गीत जो फिल्मों के नाम थे वो एक साथ उस गाने में आ गए थे, उस कारण से ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बारात रेडियो पर निकल गई हो। तो उन्होंने मनिंदर सिंह देवगुन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है और हम माइक्रोफोन के माध्यम से उन्हें बधाई संदेश प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही रानू नाग मैडम ने भी कभी तू छलिया लगता है कभी तू दीवाना लगता है, पत्थर के फूल का गीत था जिसमें 40 से अधिक फिल्मों के शीर्षकों को गीत की पंक्तियों में पिरोया, वो भी उन्हें बहुत अच्छा लगा। हम रानू नाग मैडम को भी बधाई संदेश प्रेषित कर रहे हैं। इसके अलावा 3 पंक्तियों को लिखा है, वो मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। किसी की आवाज में अपनापन है, किसी के अंदाज में मिठास है, किसी की प्रस्तुति में ज्ञान है, तो किसी की बातों में मनोरंजन की फुहार है। इसलिए तो आकाशवाणी केवल रेडियो नहीं लगता, यह श्रोताओं का अपना घर और अपनी आवाज लगता है। इतने अच्छे पंक्तियां लिखने के लिए एक बार पुनः रोशन जी को बहुत बहुत बधाइयां।
1: जी, अगला संदेश है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू का। ये लिखते हैं कि पत्रांकन प्रस्तुतकर्ता को हमारा नमस्कार। हमारी प्रिय आकाशवाणी जगदलपुर की बात ही अनूठी और निराली है। हमारे अनगिनत श्रोता मित्र देश और दुनिया भर में छाए हुए हैं। हर वर्ग के तमाम श्रोता हैं, उनकी पसंद भी अलग अलग है, या यूं कहें कि पसंद अपने अपने, ख्याल अपना अपना, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गीत संगीत प्रेमी सभी श्रोता मित्रों को ध्यान में रखकर प्रोग्राम तैयार करने में यहाँ के हमारे प्रिय अनाउंसर कोई कसर नहीं छोड़ते और प्रोग्राम को सफल बनाने में कड़ी मेहनत करते हैं। हम सभी अनाउंसरों को सैल्यूट करते हैं, ये बात हमने यूं ही नहीं कही, इसका प्रमाण है। ये आगे लिखते हैं कि 5 सितंबर एक ही कलाकार कार्यक्रम में मखमली आवाज की मलिका हर्षिता अय्यर ने कार्यक्रम पेश किया था। इन्होंने नए जमाने की नई पसंद को ध्यान में रखकर कार्यक्रम पेश किया जो इन्हें बेहद पसंद आया। और आगे ये लिखते हैं कि हमें बेसब्री से कार्यक्रम श्रोता सुमन का इंतजार रहता है और एक ही कलाकार और श्रोता सुमन की प्रस्तुति इन्हें बहुत पसंद आई 5 सितंबर की। और इसी तरह से प्रोग्राम की सफल सारगर्भित शानदार मस्त मनभावन लाजवाब पेशकश के लिए इन्होंने हर्षिता अय्यर को बधाई दी है और साधुवाद कहा है।
0: जी, सबसे पहले तो बबलू साहू ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से जो संदेश आया है उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने इतना सारगर्भित कार्यक्रम की जो समीक्षा की है वो काबिले तारीफ है। उन्हें 5 सितंबर का एक ही कलाकार साथ ही
1: श्रोता
0: सुमन इन्हें कार्यक्रम बहुत पसंद आया। उन्होंने हर्षिता अय्यर को जिन्होंने कार्यक्रम पेश किया था उन्हें बधाई संदेश प्रेषित की है, तो हम माइक्रोफोन के जरिए बधाई संदेश भेज रहे हैं। बहरहाल अच्छे संदेश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और अब ये अंतिम संदेश मैं ले रही हूँ
0: जी,
1: अनूपपुर मध्य प्रदेश से जय मंत्री केवट का। इन्होंने भी बहुत विस्तार पूर्वक हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा की है। ये लिखती हैं कि 27 अगस्त की सुबह की सभा में राष्ट्रीय पेट्रोलियम दिवस पर बहुत अच्छी जानकारी दी गई। 28 को गुलशन के कुछ अंश सुने जो बेहद पसंद आया। 30 अगस्त फोन इन चाहत और दोपहर की सभा श्रोता सुमन। 1 सितंबर के कलाकार में राजकमल के गीतों के साथ उनके बारे में जो जानकारी दी गई इन्हें बेहद पसंद आया। आगे लिखते हैं कि 3 सितंबर के पोषक सप्ताह पर बहुत अच्छी जानकारी के लिए रानू नाग जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 30 अगस्त की सुबह हरिप्रिया जी ने भी बहुत अच्छा कार्यक्रम पेश किया जिसमें मुख्य चर्चा के बाद मधुर गीत सुनाई दिए, उन्हें भी बधाई। इसी तरह हमारा बस्तर कार्यक्रम में राव डोंगरी के बारे में जानकारी मिली, ये भी इन्हें पसंद आया। 21 अगस्त दोपहर की सभा में एक ही कलाकार कार्यक्रम में निर्माता निर्देशक ओम प्रकाश के गीतों की इन्हें जानकारी मिली। वहीं श्रोता सुमन ने बहुत ही उम्दा गीतों को शामिल किया मनिंदर सिंह देवकुण ने, उन्हें भी उन्होंने बधाई दी है। इसी दिन मधुरिमा में प्यार के इजहार से भर

0: वह गीत चुनकर लाए जो बेहद पसंद आया। 9:30 बजे फिल्म साजन का गीत दिल को छू लिया और 2 सितंबर को हलछट करमर छठ की पूजा की तैयारी के साथ जसवीर कौर की प्रस्तुति सुनकर मन प्रफुल्लित हो गया। एक ही फिल्म में रोटी के गीत चुनकर लाई थी, इन्हें बहुत पसंद आया। और इसी दिन दोपहर को डॉक्टर हर्षिता अय्यर की पेशकश भी इन्हें बहुत अच्छी लगी। और 3 सितंबर को नमस्कार जगदलपुर में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाने के उद्देश्य से जो भेंट वार्ता प्रसारित किया गया, जिसे धर्मदीप डोंगरे सर जी भेंट कर रहे थे महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी अभिलाषा यादव से, तो इन्होंने इस कार्यक्रम की भी बेहद तारीफ की है। ये लिखते हैं कि अपने बच्चों को सही पोषण के लिए किन किन खाद्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है, इसे विस्तार से बताया गया। सृष्टि श्रीवास्तव की प्रस्तुति भी इन्हें पसंद आई, जिन्होंने सुखविंदर सिंह पर प्रस्तुति दी थी कार्यक्रम एक ही कलाकार में। 4 सितंबर को सुखेंदु मलिक की प्रस्तुति की उन्होंने पसंद किया है। और रूपाली सेठिया द्वारा प्रस्तुत एक ही कलाकार कार्यक्रम में ऋषि कपूर की प्रस्तुति की भी इन्होंने तारीफ की है। और 5 सितंबर को भरत गंगादित्य ने शिक्षक दिवस पर शिक्षा और शिक्षक के संबंध में जो हमें जानकारियां दी, उनके लिए भी इन्होंने उन्हें बधाई दी है। ये लिखते हैं कि वैसे रेडियो पर जिन्हें भी हम सुनते हैं वो हमारे शिक्षक हैं, सभी को बधाई और शुभकामनाएं। 6 सितंबर को रूपाली पारोई द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक पठन दिवस पर भी बहुत अच्छी बातें बताई गईं।
1: जी, बहुत अच्छा संदेश भेजा है अनूपपुर मध्य प्रदेश से जय मंत्री केवट जी ने। इन्हें सबसे पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हर एक दिन का पूरा सार गर्भित एक एक कार्यक्रम की उन्होंने जानकारियां लिखकर भेजी है, जो उन्हें बहुत अच्छी लगी।
0: जी,
1: पोषक सप्ताह के ऊपर में जो जानकारी अच्छी लगी, उन्होंने रानू नाग जी को बधाई संदेश दिया है। हम भी रानू नाग जी को माइक्रोफोन के माध्यम से बधाई संदेश प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही 30 अगस्त की सुबह हरिप्रिया जी ने जो नमस्कार जगदलपुर में मधुरिमा प्रस्तुत की थी, उन्हें बहुत अच्छा लगा। साथ ही इसके अलावा 31 अगस्त दोपहर की सभा में एक ही कलाकार में उन्होंने ओम प्रकाश जी के गीतों को सराहा। ऐसे ही मतलब चुनिंदा गीत चुनकर लाए थे, उन्हें प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही हर्षिता अय्यर जी दोपहर में जो अभिनेत्री साधना के गीतों पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, उन्हें बहुत अच्छा लगा, उसके लिए उन्होंने बधाई प्रेषित की है। हम भी माइक्रोफोन के जरिए उन तक बधाई संदेश प्रेषित कर रहे हैं। 3 सितंबर को जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के ऊपर में जो कार्यक्रम जो भेंटवार्ता थी बाल विकास परियोजना अधिकारी अभिलाषा यादव जी से, सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा, जिसमें पोषण के महत्व को बताते हुए शासन की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे और जो चर्चाएं उन्हें और अपने बच्चों को सही पोषण किन किन खाद्य सामग्री से मिलते हैं विस्तार से बताया, उन्हें बहुत अच्छा लगा, सुनकर हमें भी अच्छा लगा। साथ ही जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सुखेंदु मलिक जी ने जो चर्चा की थी, साथ ही गीत सुनाए थे, उन्हें बहुत पसंद आए, तो हम सुखेंदु मलिक जी को बधाई संदेश प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही दोपहर की सभा में रूपाली सेठिया जी ने जो श्रोता सुमन कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, उन्हें बहुत अच्छा लगा था, हम भी उन्हें बधाई प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही 5 सितंबर के दिन भरत कुमार गंगादित्य ने शिक्षक दिवस पर शिक्षा और शिक्षक के संबंध में जो जानकारी दी थी और जो गीत सुनाए थे, उन्हें बहुत अच्छे लगे, उनके लिए उन्होंने भरत गंगादित्य को बधाई संदेश प्रेषित किए हैं, हम भी उन्हें बधाई संदेश प्रेषित कर दे रहे हैं। और 6 सितंबर को रूपाली पारोई जी ने जो नमस्कार जगदलपुर में राष्ट्रीय पुस्तक पठन दिवस पर जो अच्छी चर्चा की थी कि पुस्तक पढ़ने से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, और इसके अलावा हमें तो ऐसा लगता है कि जो कार्यक्रम है आकाशवाणी जगदलपुर से रोजाना प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो हमारे उद्घोषक है और कंपियर साथी जो है, इन लोग जो प्रस्तुति दे रहे हैं, इनसे हमारे जगदलपुर के जो कार्यक्रम है वो दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छे कार्यक्रम की प्रस्तुतियां देंगे।
0: पत्रांकन कार्यक्रम अब हम समाप्त करना चाहेंगे सर, और तो वैसे तो हमारे और भी श्रोताओं ने हमें खत लिखा है
1: जी,
0: लेकिन जो खत है वो हम अगले पत्रांकन कार्यक्रम में उन्हें शामिल करेंगे।
1: पत्रांकन के लिए व्हाट्सएप नंबर जिस पर श्रोता अपने संदेश प्रेषित करते हैं 9425590590
0: 9425590590।
1: इसी के साथ ही पत्रांकन कार्यक्रम से मुझे धर्मदीप डोंगरे
0: और गायत्री आचार्य को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आप सभी के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम पत्रांकन। प्रस्तुति थी धर्मदीप डोंगरे और गायत्री आचार्य की। श्रोताओं आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: पेश है मधुरिमा।

मैं विरह की वेदना लिखूं या मिलन की झंकार, तू ही बता कैसे लिखूं थोड़े शब्दों में सारा प्यार।

ठहर जा कुछ पल, अभी शाम बाकी है। तेरी आंखों में मोहब्बत का पैगाम बाकी है। यूं अचानक रुख फेर कर न जाए हमदम, अभी तो दिल की बातें तमाम बाकी हैं।

तो मिले तो लगा जैसे मंजिल मिल गई, दिल की वीरान राहों को महफिल मिल गई। एक ऐसा हम सफर चाहा था जिंदगी में, जिसकी सादगी से ही मेरी दुनिया खिल गई।

श्रोता मधुरिमा में आज आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वे थी मेला, मेरे हमदम मेरे दोस्त और मेरे हमसफर। आवाजें थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश की।

0: अभी आप सुन रहे
1: अभी आप सुन रहे
0: हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
3: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया। जितनी भी उसमें प्रॉब्लम

0: उनको सॉल्व किया।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
2: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे तीन मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू सारण, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की तीन रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए AI सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
3: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
4: श्री बेटल ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटल ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटल ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्किन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2000.

0: 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमरीका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमरीकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमरीकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को लंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले 2 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
4: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी पदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा

0: रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्ताव की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हत्यारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, MCD अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, हॉर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमरीका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara in Gujarat today. To also inaugurate Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Defence Acquisition Council clears capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for defence forces. Luxembourg backs India's bid for permanent seat in UN Security Council. India joins US and 24 other countries to shape development of next generation 6G networks. Delhi police arrests 3 members of family that owned collapsed building in Satyaniketan area of national capital. And India set to feature in 4 gold medal finals at World Archery Para Series in Ahmedabad today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Gujarat, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara. Mr. Modi will also dedicate to the nation 3 important sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the completion of the project. Talking to media persons at Ahmedabad Airport, Union Minister Ashwini Vaishnaw said, this mega project has now been fully completed. And

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के ए अंक मा आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम, महेंद्र साहू को तिले। श्रोता साथी हो, आज आप मल्ला सुनवाथन एक कवि गोष्ठी, और एक कवि गोष्ठी के संचालन करत हैं श्री बलराम चंद्राकर। ता आवाज सुनाथन ये कवि गोष्ठी ला।
1: जय जोहार संगवारी हो, छत्तीसगढ़ी साहित्य कला और संस्कृति के आवाज आकाशवाणी रायपुर के लोकप्रिय कार्यक्रम मोर भुइयां के सबो सुनैया भाई बहनी मल्ला मोर राम राम है। आज के ये मोर भुइयां कार्यक्रम हा कवि गोष्ठी पर समर्पित है। आज ये गोष्ठी मा हमर संग उपस्थित है कवियत्री श्रीमती शकुंतला तरार जी रायपुर से, जौन वरिष्ठ साहित्यकार है। साथ में है श्री गोविंद धनगर जी बोरिया खुर्द रायपुर ले, बहुत अच्छा गीतकार, रचनाकार और चित्रकार आज कवि के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। और मैं स्वयं बलराम चंद्राकर भिलाई से गीतकार के रूप में आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो संगी हो, चलो सुनन आज कविता। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ श्रीमती शकुंतला।

0: धार जिला अपन काव्य पाठ करे बर
1: पहली मोला बुलाए है तो मैं छत्तीसगढ़ महतारी के वंदना कर देता हूँ।
0: स्वागत है।
1: यह भोजली धुन में है, अभी हमारे भोजली हो है
0: जी,
1: अभी अभी

0: बहुत सुंदर।
1: बंदो छत्तीसगढ़ मैया,
2: बहुत बढ़िया जी।
0: तो ये तरह ले छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना के साथ शकुंतला तरा जिला आप सुने हो। बहुत सुंदर प्रस्तुति दीदी के, बहुत सुंदर शब्द संयोजन। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री गोविंद धनगढ़ जिला जौन अपन रचना पाठ करी।
2: मैं गांव के रहिया हूँ, गमई मूर जिनगानी है, जिहां के कन कन देवता धामी और गंगा बरोबर पानी है।
0: वाह,
2: आज आधुनिकता के चलत गांव अब गांव नहीं रहेगी। गांव अब गांव कहां शहर बन गए, गांव अब गांव कहां शहर बन गए, आरा पारा चारों कोती नगर बन गए। अब चरागन नहीं है गाय गरु पर, अब नहीं है कोनो अघवा के हाथ उठैया, धर्म के धजा न्याय के गदा और अमृत के चरूबर, भाई के बोली हा भाई बर जहर बन गए, धुकुर धुकुर करते जी गांव अब शहर बन गए। तब बोले हमारे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल के गांव गवई के महिमा महान है
0: जी जी।
2: मैं छत्तीसगढ़ के गांव रे, मैं छत्तीसगढ़ के
0: गांव रे, बढ़िया
2: मोर किसम किसम के नाम रे, मैं छत्तीसगढ़ के
1: गांव
2: बहुत बड़े फजर चिरगुन के चारी, संझा गऊ धुर्रा के पाम रे, मैं छत्तीसगढ़ के गांव
0: रे, वाह
2: मोर किसम किसम के नाम रे, मैं छत्तीसगढ़ के गांव। कोहड़ी में गरवा लाली धौरा, बैठे सज्जन गुड़ी चौरा, बारी बखरी तन कचरा घुरवा, खेत खार तन ढोड़गा नरवा, गहिरा के छो छो बछरू के छुन छुन, बर पीपर के छाम रे, मैं छत्तीसगढ़ के गांव
0: रे, बढ़िया भैया।
2: मोर किसम किसम के नाम रे, मैं छत्तीस

0: पावन कोरा, घर घर सगा सोधर के अगोरा।
1: अच्छा
0: दुखिया सुखिया दोनों बहिनी, बुधिया मंटोरा काहत कहनी।
1: वाह,
0: चिउ चिउ चिरई पिला छानी माँ,
1: चिउ
0: चिउ चिरई पिला छानी माँ, कौवा काम काम रे मैं छत्तीसगढ़ के गाँव
1: रे। क्या बात,
0: मोर किसम किसम के नाम रे मैं छत्तीसगढ़ के गाँव। मया मुगर थे भाखा बोली, ओनहारी खेले डोली डोली। मया मुगर थे भाखा बोली, ओनहारी खेले डोली डोली। लोक रंग के जीवन गाथा, डंडा शरण नवा वै माथा।
2: बहुत सुंदर।
0: भेद भावला भूरी ले सिके, भेद भावला भूरी ले सिके, सिर जाथम सुनता के ठाम रे मैं छत्तीसगढ़ के गाँव। मोर किसम किसम के नाम रे मैं छत्तीसगढ़ के गाँव। गाँव म गौरी गाँव म गंगा, पनिहारिन सब रेंगे संघरा।
1: अच्छा।
0: गाँव म सूरज गाँव म चंदा, गाँव के धरती धन के हंडा। गाँव के देवता डीही डोंगर, गाँव के देवता डीही डोंगर, गोविंद पखारे पाँव रे मैं छत्तीसगढ़ के गाँव।
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: मोर किसम किसम के नाम रे मैं छत्तीसगढ़ के गाँव। मैं छत्तीसगढ़ के गाँव रे मैं छत्तीसगढ़ के गाँव।
1: वाह वाह गोविंद,
0: छत्तीसगढ़ के
1: बहुत सुंदर रचना पाठ। छत्तीसगढ़ के गांव, मैं छत्तीसगढ़ के गांव, कतेक सुंदर रचना पाठ करे आप मन छत्तीसगढ़ के गुण गावत। तो एक
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं हमर संचालन करैया भाई बलराम चंद्र अकरला आवाज देवत हूँ, उन मन आए और अपन रचना के पाठ करें। और ओखर पहली में ये बोला था कि अभी ये बरसात के मौसम है नहीं
1: जी जी जी,
2: तब बादर आवे छावन छावे, ऐसन भावे बैरन पानी। बादर आवे छावन छावे, ऐसन भावे बैरन पानी। बैरन काबर भीजय आचर, चूहत हे खपरा उछानी। नांगर जोते सावन माते, मनखे नाचय औघड़ दानी। दादुर गावय गीत सुनावय, तारनहार लुभाए किसानी। तारनहार लुभाए किसानी, यही शब्द के संग में मैं भाई बलराम चंद्र अकरला बलावत हूँ, आए और अपन रचना का पाठ करें।
1: धन्यवाद दीदी। तो चुकमोर भूया कार्यक्रम हरे, तो मैं चार लाइन पहली भूया महतारी के लिए पाठ करूं और फिर ओकर बाद यशोदा के ललना किशन कन्हैया
2: स्वागत है हाँ,
1: एकर पाठ करूं। तो अथाह अनंत हवय महिमा, नई भेद करय भूया महतारी। न धर्म न पंथ न स्वार्थ जानय, प्रेम रसा बरसात है भारी। हरे धरती अनमोल सुधा, फर फूल अनाज उगय तरकारी। नदिया नरवा वन घाट समुन्दर, डोंगर हे सौंधे फुलवारी।
0: फुलवारी क्या बात है।
1: तो संगवारी हो, अभी ये आठे कन्हैया तीजा पोरा और ये भादो के महीना तिहार के महीना है, तो मैं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर मा और ओकर महत्तम ला देखते हुए मैं किशन कन्हैया के बाल रूप के वर्णन करत हूँ। ये यशोदा के ललना
2: स्वागत है।
1: ठुमक ठुमक नाचत हे बाबू नन कैया,
2: क्या बात।
1: ठुमक ठुमक नाचत हे बाबू नन कैया, यशोदा के ललना किशन कन्हैया। ठुमक ठुमक नाचत हे बाबू नन कैया, घुंघरूहा पाओ के छुमक छुमक बाजत है।
2: क्या बात है, क्या बात।
1: घुंघरू

0: जीव राखन
1: सबके जीव के रखवाला।
0: बहुत बढ़िया।
1: धरे हवे रोटी ला हाथ में जीव राखन, मुँह मा चटके हावे कैसे वो कर माखन, बिजरावत काबर बलदाऊ बड़े भैया, ठुमक ठुमक नाचत हे बाबू नन कैया, यशोदा के ललना किसना कन्हैया, ठुमक ठुमक नाचत हे बाबू।

0: संग सुघर में छरावत बछरू सोहैया,
1: क्या बात है, क्या
0: ठुमक ठुमक नाचत हे बाबू नन कैया, यशोदा के ललना किसना कन्हैया, ठुमक ठुमक नाचत हे बाबू नन कैया। आखिरी अंतर है,
1: स्वागत है
0: आठे

0: कई सन दुलर वामुर की सन लला है, आठे कन्हैया के सोला कला है। कई सन दुलर वामुर की सन लला है, सोच सोच मैया बड़ लेवत है बलैया, ठुमुक ठुमुक नाचत है किसन कन्हैया, ठुमुक ठुमुक नाचत है बाबू नन कैया, यशोदा के ललना किसन कन्हैया, ठुमुक ठुमुक नाचत है बाबू नन कैया।
1: बहुत सुंदर भाई बलराम चंद्राकर जी, हमला नंद गांव में हमरा देश, बिल्कुल ऐसे लगत रहे इसकी अभी ठुमक ठुमक क्या बात है नन कैया।
0: तो ए प्रकार ले अब मैं दूसरा बार फिर आमंत्रित करूँ श्रीमती शकुंतला तरार जिला की आही और काव्य पाठ करही।
1: आने के दुखला मिटा के देख लो, आने के दुखला मिटा के देख लो, पीरा में घलो मुस्किया के देख लो, आने के दुखला मिटा के देख लो, पीरा में घलो मुस्किया के देख लो, जिंदगी कैसे हंस के पहा जाही, गीत लथुकन गुनगुना के देख लो।
2: वाह वाह, बहुत बढ़िया।
1: तो यही भाव के संग में मैं एक गीत सुनावत हूँ।
0: स्वागत है, स्वागत।
1: एक शीर्षक है दिल के महानदी माँ।
0: जी जी जी।
1: दिल के महानदी माँ।

0: क्या बात है।
1: मैं थुकन कहूं घबरा जाहूं तब धर बे धीरज दाम।
0: बढ़िया बढ़िया।
1: डगमग डगमग डूंगा हो ही तब ते जोर लगा बे। डगमग डगमग डूंगा हो ही तब ते तोर लगा बे।

0: गटवारी डोंगा तय चला बे धीरे धीरे।
1: बढ़िया बढ़िया।
0: पवन झकोरा देवत हावे जिंदगी के ताल थपा थपा।
1: बहुत बढ़िया।
0: पवन झकोरा देवत हावे जिंदगी के ताल थपा थप। घटवारी तय डोंगा चला ले खेवन हार छपा छप।
2: बहुत बढ़िया।
0: घटवारी ते डोंगा चला ले खेवन हार छपा छप। समय बरोना कब आही औ कब पर ले के बेरा। समय बरोना कब आही औ कब पर ले के बेरा। डोंगा चला ले नाव बढ़ा ले जोर लगा ले हैया। डोंगा चला ले नाव बढ़ा ले जोर लगा ले हैया। छप छप छैया कर ले हैया छप छप छैया। छप छप छैया कर ले हैया डोंगला बढ़ा बे धीरे धीरे। छप छप छैया कर ले हैया छप छप डोंगा बढ़ाबे। छप छप डोंगा बढ़ाबे धीरे धीरे रे घटवारी धीरे धीरे रे घटवारी।

0: चलाबे धीरे धीरे, ढूंगते चलाबे धीरे धीरे।
1: बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया,
2: बहुत बढ़िया दीदी। ढोंगा तय चलाबे धीरे धीरे। अभी सुने श्रीमती शकुंतला तरार जी के जीवन और संवेदना के सुंदर अभिव्यक्ति आप मन के बीच प्रस्तुत करीस। और अब मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ श्री गोविंद धनगर जिला।
1: हमारे छत्तीसगढ़ में तिहार बार के सीजन बारो मासी चलते रहते, तो आज मैं अपन श्रोता मैं श्रोता संगवारी मन पर तीजा के ऊपर रचना पाठ कर।
2: स्वागत स्वागत, बहुत बढ़िया, सामीक है।
1: एक तिजहारिन बेटी है, मैके की सुरता ला कैसे व्यक्त करते और छत्तीसगढ़ महतारी के मान बढ़ाते। घम घम ले उज्जर काशी फूल गे,
3: क्या बात,
1: बन बन फूल चिरैया फूल गे, सावन पुन्नी राखी बीत गे, दिन लक ठावत अचरा भिज गे, सुधे आवत मैके के कोरा दीदी आगे तीजा
2: पोरा। वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: मैं तुझे हारिन जो हत रद्दा करते हूँ
2: अगोरा,
3: अगोरा क्या बात,
1: तुझे हारिन जो हत रद्दा करते हूँ।
2: बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया।
1: मंदिर महादेव में मनौती मनाते, जोड़ा जोड़ा नरियर औ फूल में चढ़ाते, भोजली दाई सरोवर भैया लेनहार सब बहिनी घर चल दिस, मई के भुयाला माथ नवा के, मई के भुयाला माथ नवा के, धोते हूँ पाँव के धुरो दीदी आगे तीजा पूरा। मैं तीजे हारिन जो हत रद्दा करते हूँ, भाई के मया औ दादा के दुलारी, रही रही सुधे आवत है अंगना
2: दुआर के,
1: ससुरे है बुढ़ती औ मई के भंडार है, कल कल नदिया बीच पूरा के धार है। डोंगा डोंग हारे अन भरोसी, डोंगा डोंग हार के अन भरोसी, मेघा बर से घन घोरव दीदी आगे तीजा पूरा।

0: बढ़िया भैया।
1: मैं तिजहारिन जो हत रद्दा करते हूँ अगोरा, नान्हे पन मखेले संग के संग वारी, लेवत हो ही सोर मोर फूल फूल वारी, चुल बुल हीन बैसाखिन नोनी हलर हलर करही, घर घर तिरबेनी ननपन के बिसरे गोठ करही, ननपन के बिसरे गोठ ल करही, स्कूल गड़ी मन टोरा दीदी आगे तीजा पूरा, मैं तिजे हारिन जो हत रद्दा करत हूँ अगोरा, मई के माई के नवा नवा लुगरा, चटक मटक फूफू बड़े दीदी के रेंगना, बच्छर दिन के हमर पवन पारब है, संगी सहेली संग गोठ लुभावन है, सुहागिन ला मान देवा थे, सुहागिन ला सम्मान देवा थे, छत्तीसगढ़ के तीजा पोरा दीदी आगे तीजा पोरा।
2: बढ़ती
1: मंत्र है,
2: स्वागत है।
1: बेटी सौहत लक्ष्मी दाई के अवतार है, पौरी पौरी दिन दिन गढ़हत संस्कार है, बेटी सौहत लक्ष्मी दाई के अवतार है, पौरी पौरी दिन दिन गढ़हत संस्कार है, अंतस भीतरी दया मया बरस थे, जिंदगी भर हासी खुशी सुख रचना कर थे, धान मान अचरा मठिया थे, धान मान अचरा गठिया थे, धन धन धान कटोरा उ दीदी
0: आगे तीजा पूरा। बढ़िया भी,
1: मैं तीजे हारिन जो हत रद्दा करते हूँ अगोरा, मैं तीजे हारिन जो हत रद्दा करते हूँ अगोरा, घम घम ले उज्जर काशी फूल गे, बन बन फूल चिरैया फूल गे, सावन पुन्नी राखी बीत गे, दिन लकठावत अचरा भिज गे, सुधयावध मई के कोरा दीदी आगे तीजा पूरा, दीदी आगे तीजा पूरा करत हूँ।
0: वाह वाह भैया जी, वाह वाह धनगर जी, आगे तीजा पूरा, बहुत सुंदर आप मन के रचना पाठ, आपके तीजा पूरा की रचना ला सुन के चार लाइन बोध राम निषाद जी के रचना के पंक्ति याद आ गए। परब तीजा पूरा के भैया, संस्कृति अबड़ महान है, छत्तीसगढ़ के भूया माए पुरखा के पहचान है। तो आप मन के रचना बहुत सुंदर, तीजा पूरा के सामिक रचना ला सुन के बहुत अच्छा लगी।
2: मुला भी एक मुक्तक याद आ गए,
0: स्वागत है।
2: कि जब लड़की अपन महतारी के घर में जाते तीजा भर, तो का कही थे, जन्मे जिहा बिताए नैनपन, पहुंचे मुहाटी मन मोर अनमन, ठिठक गिस मोर गोड़ के पैरी, ठिठक गिस मोर गोड़ के पैरी, दाई के आरों में बाजिस रुनझुन। तीजा में जब पहली बार मई के जाते लड़का, तब के बात है। और मैं अब हमारे भाई बलराम चंद्रा करला बलावत हूँ।
0: जात धर्म के नाम झन कर गर्व गुमान, आदमी यस आदमी ला आदमी कस जान।
2: क्या बात, क्या बात।
0: जात धर्म

बल बुद्धि विद्या के हकदार सबो है बराबर, बल बुद्धि विद्या के हकदार सबो है बराबर, ऊंच नीच छोटे

0: सत्य मान के रद्दारेंगत देश के मान बढ़ा बे दुख दरिद्री दुनिया ले मिलजुल के भगाबे सत्य मान के रद्दारेंगत देश के मान बढ़ाबे जनता न्याय सुविधा पाही हो ही तभे बिहान आदमी अस आदमी ला आदमी कस जान आदमी अस आदमी ला आदमी कस जान
1: बहुत बढ़िया
0: आदमी अस आदमी ला आदमी कस जान। तो संगवारी हो ये कवि गोष्ठी के समापन एकरे साथ हम करबो। आज कवि गोष्ठी में शामिल होइ से श्रीमती शकुंतला तरार जी, गोविंद राम धनकर जी और मैं स्वयं बलराम चंद्राकर। आप मन सुने हो और श्रोता बंधु मल्ला जय जोहार नमस्कार।
2: अभी आप मन सुनत रहे हो ये कवि गोष्ठी और एक कवि गोष्ठी के संचालन करत रहिन श्री बलराम चंद्राकर और एकरे संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ए अंकले इहे विदा देवा। जय जोहार राम राम।

0: मोर भुइयां। अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित ये साहित्यिक कार्यक्रम। इसमें आज आपने सुनाई कवि गोष्ठी, प्रतिभागी कवि थे श्री गोविंद धनकर और श्रीमती शकुंतला तरार। संचालन श्री बलराम चंद्राकर का था और इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू।
1: मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है रूपक मीत मैतर का दूसरा भाग। रूपक के लेखक है तुलसीराम मौर्य, प्रस्तुत करता है बलबीर सिंह कच्छ।

0: मैत्री भाव को जीवन पर्यंत जीना और अगली पीढ़ी को भी उसका निर्वहन करते रहने की भावना दे जाने का मीत मैत्र संस्कार बस्तर अंचल का सदियों से चला आ रहा अनोखा रिवाज है।
1: मध्य बस्तर और पूर्वी अंचल के कुछ ग्रामों में समय समय पर ग्रामवासी धन धान्य से परिपूर्ण रहे, इस भावना से आपसी सहमति और एक दूसरे के सहयोग से बड़े हर्षोल्लास के साथ लक्ष्मी जगार पर्व मनाते हैं।
0: इस पर्व में अन्नदायिनी महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। धान के पौधों को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस पूजा में चढ़ाए जाने वाले फल फूल नारियल चावल आदि को लक्ष्मी का प्रसाद कहा जाता है। लक्ष्मी प्रसाद बदने के लिए लक्ष्मी जगार के विसर्जन के दिन हंसी खुशी के वातावरण में इसी लक्ष्मी प्रसाद का प्रयोग किया जाता है।
1: ऐसी ही परंपरा है गजा मूंग, जो बस्तर के पूर्वी क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। इस संबंध में बता रहे हैं श्री जोगेंद्र महापात्र जोगी।
2: लोक सांस्कृतिक धरती बस्तर के उन मैत्री पक्ष की श्रेणी में एक नाम जो सबसे आगे आता है वह गजामूंग कहलाता है। गजामूंग का शाब्दिक अर्थ है अंकुरित मूंग। बस्तर संभाग की जनसंपर्क भाषा हलबी के साथ ही

क्षेत्र की एक मधुर बोली भतरी में अंकुर को गाजा कहते हैं और मूंग को मूंग। गाजा मूंग की अपेक्षा गजा मूंग में कहने या बोलने की दृष्टि से अच्छा लगने के कारण गजा मूंग को गाजा मूंग का स्थान मिल गया। महाप्रसाद, तुलसी दल, मित्रता की तरह गजा मूंग मित्रता पुरुष प्रधान रिश्ता है। गजा मूंग दैना फूल, बाली फूल, सखा सखी की तरह महिला वर्ग भी गजा मूंग बदते हैं। गुंडीचा रथ पर्व से श्री जगन्नाथपुरी और गोंचा तिहार से जगदलपुर नगर बस्तर अंचल गजा मूंग बदने वालों से भक्तिमय हो जाता है। बस्तर के जन कवि पंडित रघुनाथ महापात्र जी की पंक्तियां गुंजित हो उठती हैं। तोमोरी बरसा तोमोरी सीत, तोमोरी बरसा तोमोरी सीत, एह चका डोला तोमर गाजा मूंग मित, हाय चका डोला तोमर गाजा मूंग मित। मनुष्य जीवन को सात्विकता और सार्थकता देने के लिए गजा मूंग के लिए ही विशेष मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है। अन्य मित्र परिचायक रिश्तों के लिए मुहूर्त काफी सरल होते हैं, अर्थात जहां मन मिल जाए वही रिश्ते खिल जाए। गजा मूंग बदने के लिए दोनों पक्षों को नए वस्त्र, पाक पकवान, नैवेद्य, फल फूल एकत्र करना पड़ता है। एकत्रित पूजन सामग्री से गौरी गणेश वरुण पूजा के बाद गजा मूंग बदने वाले एक दूसरे के द्वारा लाए गए सामग्रियों को आदान प्रदान करते हैं और महाप्रसाद खिलाने के बाद या साक्षी रखने के बाद अंजुलि से गजा मूंग एक दूसरे के हाथों में देते हैं। गजा मूंग और उपस्थितों के नयन सजल हो उठते हैं। गुड़ शक्कर से सने गजा मूंग, अन्य प्रसाद वितरित होते हैं। हरे राम हरे कृष्ण संकीर्तन सभी को भाव विभोर कर देता है। श्री क्षेत्र में जब से गुंडीचा पर्व आरंभ हुआ तब से गजा मूंग बदने की प्रथा चली आ रही है, जिसका आगमन जनजातीय अंचल बस्तर में 14वीं शताब्दी से है। पूर्व में गजा मूंग बदने के लिए दोनों पक्षों को पूरी या किसी तीर्थ स्थान में जाना पड़ता था, अब यह आवश्यक नहीं रह गया है। यदि एक पक्ष भी इस विषय के प्रति ईश्वर को साक्षी रखने के लिए गंतव्य तक पहुंचता है तो गजा मूंग बदने की परंपरा को वही मान्यता मिलता है जो पूर्व में था। गजा मूंग बदने के लिए सामर्थ्यवान होना जरूरी नहीं है, इसके लिए कोई जाति बंधन भी नहीं है। कोई भी किसी से भी गजा मूंग बदकर अपने मित्र भाव को अर्जुन सा स्थायी रूप, सुदामा सा आत्मीय रूप दे सकता है। गजा मूंग श्री जगन्नाथ जी का प्रिय भोग है, जिसके सामने 56 भोग तुच्छ हैं, जिसका कारण है इसी गजा मूंग से दारू ब्रह्म की खोज और पुरुषोत्तम धाम में बलराम जगन्नाथ सुभद्रा जी की प्राण प्रतिष्ठा। गजा मूंग को लेकर बस्तर का लोक संसार गा उठता है।

0: सहनाव यानी सहनाव। ये परंपरा तो बस्तर में सर्वत्र है। इस विषय में जानकारी देते हुए ये हैं श्री भागीरथी दास महानंदी।
1: दो भिन्न भिन्न व्यक्ति किंतु नाम एक, भिन्नता में एकता वाली बात चरितार्थ होती है। एक ही नाम वाले व्यक्ति एक दूसरे के निकट महसूस करते हैं, एक दूसरे के सहयोग की भी आशा रखते हैं। आशा और विश्वास के इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर मैत्री संबंध बनाने के लिए अग्रसर होते हैं। सहनाव बनने के लिए न तो किसी विशेष अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और न ही संकल्प लेने के लिए कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता। एक नाम वाले दोनों व्यक्ति की सहनाव बनने के लिए इच्छा होने पर दोनों में से किसी एक के घर में या गांव के किसी देवालय में किसी शुभ तिथि पर आमंत्रित जनों के बीच देवी देवताओं को चढ़ाए गए फूल या चावल को ही मैत्री प्रतीक मानकर सहनाव बदने के काम में लाया जाता है।
2: बाली फूल भोजली भी एक मैत्री संबंध का प्रचलित तरीका है।
0: इसके लिए विशेष अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब कभी गांव में बाली पर्व, लक्ष्मी जगार या तीजा पर्व का आयोजन किया जाता है, तब पत्तों के दोनों में या बांस की छोटी छोटी टोकरियों में मिट्टी और खाद के मिश्रण रखकर उसमें गेहूं और धान उगाए जाते हैं। उस पर हल्दी पानी छिड़कने पर 8 से 10 दिनों में गेहूं और धान के पीले नन्हे पौधे लहलहा उठते हैं। इन्हीं नन्हे पौधों को भोजली कहा जाता है। विसर्जन के दिन भोजली के नन्हे पौधों को तोड़कर भोजली बदने में प्रयोग किया जाता है और बाली पर्व के विसर्जन फूल से बाली फूल बदते हैं।

0: इसी तरह केवरा, कनेर और कुंद फूल मैत्री संबंध बनाने के लिए प्रतीक के रूप में अपनाए जाते हैं।
1: इसके लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। मैत्री प्रतीक पुष्प उपलब्ध रहने पर कभी भी मैत्री संकल्प किए जा सकते हैं।
0: डांडा माली स्त्रियों के गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का सोने का हार होता है। यह हार गले में एकदम चिपका रहता है। ऐ मेरे मित्र, तू मेरी मित्रता को डांडा माली के समान अपने से चिपकाए रखना। इन्हीं भावनाओं के साथ दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए मैत्री परिचायक संबोधन डांडा माली का प्रयोग करते हैं।
1: स्त्रियों के बीच मैत्री संबंध की परंपरा कुछ पृथकता लिए होती है। हजारी फूल, कुड़ई फूल, गोंदा, चंपा जैसे सुगंधित पुष्प स्त्रियों के बीच सखी बदने के काम आते हैं।
0: हाँ, ऐसे मैत्री संबंध के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। मैत्री प्रतीक फूलों का आदान प्रदान कर मैत्री संकल्प लिया जाता है।
1: बहन लोक मैत्री संबंध भी दो स्त्रियों के बीच प्रचलित है।
0: हाँ, इसके लिए भी किसी मैत्री प्रतीक की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहन कहने मात्र से ही आपसी लगाव और पवित्र रिश्ते के भाव उत्पन्न होते हैं। बहिन लोक यानी बहिन के समान लोग, इसलिए इसे मैत्री परिचायक संबोधन के रूप में प्रयोग किया जाता है।
1: और संगात केवल युवाओं के बीच बदा जाने वाला मैत्री संबंध है जो बस्तर के पूर्वी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। संग अर्थात साथ और गात यानी शरीर, इसका अर्थ हुआ शरीर के साथ साथ रहने वाला। इस मैत्री संकल्प के लिए कोई विशेष समय या प्रतीक की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल दो समवयस्क युवकों में मैत्री संबंध बनाने की इच्छा होने पर देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्पों को

0: एक दूसरे के कानों में खोंचकर संकल्प लेते हैं और उसी दिन से वे एक दूसरे के संगात बन जाते हैं।
1: मितान भाई बहन के बच्चों के बीच स्थापित होने वाला मैत्री संबंध है। यह केवल पुरुष वर्ग में ही प्रचलित है। दो मीत के बच्चे भी इस प्रकार के मैत्री संबंध बना लेते हैं।
0: मीत बदने के बाद एक मीत दूसरे मीत का नाम नहीं लेता, उसे संकल्पित नाम से ही संबोधित करता है। जैसे
2: राम राम महाप्रसाद,
3: राम राम महाप्रसाद, राम राम
2: जुआर सेना,
3: जुआर सेना, जुआर।
1: इस संकल्पित मैत्री संबंध के शर्त का दोनों पक्ष पूर्णतः निर्वाह करते हैं। तीज त्योहारों में एक दूसरे के सुख दुख में अपने मीत का सहयोग करने से पीछे नहीं हटते।
0: मीत बदने के बाद जब कभी दो मीत कहीं मिलते हैं तो एक दूसरे के पैर छूकर अभिवादन करते हैं। दोनों परिवार के बच्चे भी एक दूसरे के परिवार को उतना ही सम्मान और अपनापन देते हैं। उनके बच्चे भी जुआर मीत बाबा, जुआर मीत आया और जुआर मीत भाई संबोधन के साथ आपस में मिलते हैं।
1: मेला मंडई के अवसरों पर घर में चाहे कितना भी जरूरी काम रहे, उससे एक दिन समय निकालकर अपने मीत से मिलने जरूर जाते हैं।
0: ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। मीत मैतर के लिए नया कपड़ा और साथ में अपने सामर्थ्य के अनुसार चावल, दाल आदि भेंट मीत के घर पहुंचाई जाती है। काम अवसर पर भेंट और कामों में तन मन धन से सहयोग की अनोखी प्रथा देखते ही बनती है। ऐसे समय मिल बैठने पर मीत के साथ खान पान और गान के क्षण भाव विभोर कर देने वाले होते हैं।

ये मारी गुआ वारो को जे आ दावे।

ललाटे लई कान्हा के कोरी बोए न वृंदावती सबती ना होय रसवती बोला रे मालवती वृंदावती।

Na to do ke kari to karo.

अभी आप सुन रहे थे रूपक मीत मेदर का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक थे तुलसीराम मौर्य। वाचक स्वर था राजेश श्रीवास्तव और विकसिता पाल का।

0: ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
5: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज की फिल्म है सन 1969 में बनी हुई फिल्म विश्वास। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस फिल्म के मुकेश और आशा भोसले के गाए इस गीत से।

श्रोताओं, फिल्म विश्वास के निर्माता है जे एन खत्री, निर्देशन किया है केवल पी कश्यप ने, फिल्म का छायांकन बिपिन गज्जर ने किया है और संपादन बी एस ग्लाड ने किया है। आइए सुनते हैं इस फिल्म का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में।

श्रोताओं, फिल्म विश्वास के गीत लिखे हैं गुलशन बाहुरा ने, गीतों को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। पेश है फिल्म का अगला गीत मुकेश की आवाज में।

फिल्म विश्वास में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जितेंद्र, अपर्णा सेन, भारत भूषण, कामिनी कौशल, जूनियर महमूद, गुलशन वावरा, राजेंद्र नाथ, असित सेन, मनमोहन, राज मेहता, कृष्ण धवन, श्री भगवान, दुलारी, रत्नमाला, पद्मा रानी और साधना पटेल ने। आइए सुनते हैं फिल्म का अगला गीत मनहर उदास और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
1: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म विश्वास से जुड़ी कुछ बातें और फिल्म के गाने। श्रोताओं, फिल्म विश्वास की कहानी लिखी है डेविड जेफरीज ने। फिल्म के पटकथा और संवाद का लेखन किया है ब्रिज कात्याल ने। अब चलते चलते हम आपको सुनवाते हैं फिल्म का एक और गीत, जिसे स्वर दिया है मुकेश और आशा भोसले ने।

0: इस गीत के साथ ही आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
1: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
2: पवन के ठंडे झोंके के साथ
1: हिलोरे लेगी
2: आकाश की वाणी।
1: आकाशवाणी
3: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
1: या फोन करें 222150 या 222400,
2: 222150 या 222400।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: प्रादेशिक समाचार,
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF का शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल ने निजी विश्वविद्यालयों की अद्यतन जानकारी के लिए नए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में कल 9 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF का शुभारंभ करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली सालाना फिनटेक सम्मेलनों में से एक GFF का इस बार का विषय है पोटेंशियल टू इम्पैक्ट एजेंटिक AI टोकनाइजेशन क्वांटम ट्रस्टेड कनेक्टेड ग्लोबल सिस्टम्स फॉर इंक्लूसिव फाइनेंस। प्रधानमंत्री सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस LPG रिफिल बुकिंग के लिए नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के सभी घरेलू LPG उपभोक्ता, चाहे वे शहरी क्षेत्र के हों या ग्रामीण क्षेत्र के, 25 दिनों के अंतराल पर अपना अगला सिलेंडर बुक करा सकेंगे। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट के चलते LPG आपूर्ति पर दबाव बनाने के कारण पहले रिफिल बुकिंग का अंतराल शहरी क्षेत्रों के लिए 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन तय किया गया था, जिसे अब समान कर दिया गया है। राज्यपाल रमेन डेका ने कल रायपुर में निजी विश्वविद्यालयों की अद्यतन जानकारी के लिए नए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल पर निजी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम, अकादमिक कैलेंडर, प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी, अंकसूची और परीक्षा परिणाम उपलब्ध होंगे। इसके अलावा शुल्क अधिकारियों, PhD, शोध निर्देशकों, शैक्षणिक स्वीकृतियों और रिक्त पदों की जानकारी भी मिलेगी। इससे निजी विश्वविद्यालयों की गतिविधियों में पारदर्शिता और निगरानी को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता के प्रारूप को तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और भरण पोषण जैसे विषयों पर सुझाव दिए। कुलपतियों ने कानून को शोध आधारित बनाने और सभी जिलों में जमीनी स्तर पर सर्वे कराने पर जोर दिया। हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने तकनीकी और कानूनी सहयोग का भरोसा दिलाया। समिति ने सुझावों को अंतिम प्रारूप में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। सक्ती जिले के ग्राम जेठा में 11 सितंबर को वृहद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसकी अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों का गृह प्रवेश,

0: पंचायत पदाधिकारी और लखपति दीदी सम्मेलन होगा। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन शिलान्यास भी किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने कल कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा नौवां राष्ट्रीय पोषण माह 9 सितंबर को वाराणसी से शुरू किया जाएगा। इस वर्ष का अभियान मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण के दूसरे चरण के अंतर्गत संशोधित पूरक पोषण कार्यक्रम एसएनपी दिशा निर्देशों के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। पोषण माह 5 प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा। इनमें आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक भागीदारी और जवाबदेही तथा बच्चों के विकास के लिए पोषण, प्रारंभिक प्रोत्साहन और शिक्षा शामिल है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में कल 9 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विज्ञानी डॉ गायत्री वाणी ने बताया कि 10 और 11 सितंबर के बाद दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF का शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल ने निजी विश्वविद्यालय की अद्यतन जानकारी के लिए नए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में कल 9 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे हैं।
2: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
3: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में अनेक स्वावलंबन योजनाएं लागू की है। महिलाएं शहरी हों या ग्रामीण, सभी तक बड़ी आसानी के साथ पहुंच रही है रोजगारोन्मुखी योजनाएं। छत्तीसगढ़ की महिला भी आज बेहद जागरूक नजर आती हैं। शहरों में वे सरपट ई रिक्शा चलाती दिखाई देती हैं और गांवों में ड्रोन पर अपने हाथों का कौशल दिखाती। इसके अलावा भी महतारी वंदन योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कई लघु उद्योगों से महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन आर्थिक सशक्तिकरण और कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत ही राज्य की महिला

0: को लखपति दीदी का सम्मान हासिल हुआ है। छत्तीसगढ़ में लखपति दीदी योजना के तहत अब तक 13 लाख से अधिक महिलाएं सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा की आय अर्जित करके लखपति दीदी बन चुकी हैं। प्रदेश में 31 लाख से अधिक महिलाएं स्व सहायता समूहों यानी बिहान योजना से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड और बैंक लिंकेज के जरिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश की महिलाएं पशुपालन, अचार निर्माण, कृषि कार्य, सिलाई और दुकान संचालन जैसे छोटे व्यवसायों से अपनी आय बढ़ा रही हैं।
1: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।

0: छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही योजनाओं के सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं। पहले जहां आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए परिवार को पालना दुभर था, वहां अब संसाधनों की उपलब्धता के कारण उनके जीवन स्तर में एक बड़ा परिवर्तन आया है। शासन की योजनाओं का लाभ उठाकर और वित्तीय संस्थानों से समुचित सहयोग पाकर अब महिलाएं कृषि और दिहाड़ी मजदूरी से आगे बढ़कर स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
1: मेरा नाम अमीला देवांगन, ग्राम मेढ़ा, पोस्ट मेढ़ा, थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। समूह में जुड़े हों मला 2016 में जुड़े हों समूह में जुड़े उस समय मोर पास कुछ नहीं रही, छोटा सा किराना दुकान रही से, वो दुकान मोर चलत नहीं रही से। शुरुआत में तो हम लोग ना शुरुआत में ना समूह में जुड़े ना तो मोर पास कुछ नहीं रही, छोटा सा दुकान रही से। फिर 10-10 रुपया करके हम समूह बनाए 11 जन के, 10-10 रुपया जमा करें, 6 महीना तक जमा करें, उखर बाद में हमारा खाता खुली। खाता खुले के बाद में 15,000 अनुदान राशि आई। 15,000 में 5,000 उठाओ, 5,000 उठा के मोर दुकान ल बढ़ाओ। ओकर बाद में भी मोर दुकान चलते रही से, छोटा सा दुकान रही से। ओकर बाद में मैं सोचे हूँ और ज्यादा पैसा निकालू, मोर धंधा ला जाऊँ, तो मोला ग्राम संगठन से मोला 60,000 पैसा मिली। 60,000 पैसा लुठाओ, फिर आगे बढ़े हूँ, दुकान ला आगे बढ़ाओ। ओकर बाद में मैं यहाँ अच्छा पटात रहे हूँ, तो मोर आदत व्यवहार देख के समूह के महिला लोग फिर मोला ना 50,000 लोन दी, बैंक लोन ला भी मैं यहाँ 12 महीना में पटाओ, फिर मोर धंधा बढ़ाओ। वो समय में कुछ नहीं रहे, मोर धंधा धीरे धीरे बढ़त गई। ओकर बाद में मैं फिर बैंक से 2 लाख निकाले हूँ, ओला भी साल भर में पटाए हूँ। 2 लाख निकाल के मैं किराना दुकान ला मोर बढ़ाए हूँ। ओकर बाद में फिर दूसरा साल में फिर 5 लाख लोन निकाले, 5 लाख लोन निकाले और मोर घर में कुछ और रायता रही से, ओकर वजह से मैं यहाँ आरा मशीन ला खरीदे हूँ। 12 लाख, 12 लाख में आरा मशीन खरीदे हूँ और मैं लकड़ी का व्यवसाय करता हूँ, दरवाजा, खिड़की, सोफा, पलंग, और मोर अच्छा धंधा पानी चला है और मैं अच्छा हूँ। समूह जुड़े से मोर बहुत कुछ आगे बढ़े हूँ और घर से बाहर नहीं निकलते हूँ। पहले तो समूह जुड़े से मैं अच्छा बाहर तरफ निकलता हूँ, बैंक जाता हूँ, क्लस्टर जाता हूँ और बोले बार भी सीखे हूँ, मैं पहली बोला भी नहीं सीखे रहे हूँ, मोर व्यवसाय अच्छा चला थे। हाँ, हमारे लखपति दीदी समूह में ना 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य में ना 10 सदस्य पूरा

धंधा कर रहे हैं, किसी का होटल है, किसका पान ठेला है, एक का अंडा दुकान है, एक का किराना दुकान है। हमारे समूह में बहुत आगे बढ़े, हमारे समूह में जुड़े से 10 महिला आगे बढ़े हैं, और अभी सब अच्छा चला था, अब अच्छा चला थे हमारे समूह। अब समूह में जुड़े हो, धंधा आगे बढ़ा हो, वही में मोर घर के खर्चा, मोर परिवार के खर्चा सब चलाऊ मैं, और मैं खुद घर के खर्चा में मैं खुद अपन जिम्मेदारी से करता हूँ। मोर यहाँ बेटा नहीं करे, मोर पति नहीं करे, मोला हर चीज के मोला ना सीधा तेकर अपन इच्छा से किसना, मैं अपन हर चीज ला मैं अपन ऐसे करता हूँ, और मैं आगे बढ़े हूँ। अभी मोर घर वाले भी खुश है, और गांव वाले भी मोला ना अच्छा धंधा पानी बढ़ाए करके। 31 समूह है हमारे यहाँ, ओमे से मोला पैसा कमाए वाले इसे बात नहीं रखो, मैं यहाँ सेवा टाइप के करता हूँ यहाँ, इसलिए ना मोर गाँव में अभी सरपंच में जीता है।

0: राज्य सरकार द्वारा संचालित महिला स्व सहायता समूह मॉडल न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बन रहा है बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महिलाओं के अभावों से ग्रस्त जीवन में परिपूर्णता की बहार आ गई है। यही वजह है कि आत्मनिर्भर महिलाएं अब बड़े गर्व के साथ स्वयं को लखपति दीदी कहलवाना पसंद करती हैं। लखपति दीदी का ये तमगा आज छत्तीसगढ़ में प्रगतिशील महिलाओं की पहचान बन चुका है। क्या गांव, क्या कस्बे और क्या शहर, लखपति दीदियां अब राज्य के हर एक कोने में मौजूद हैं। यही तो है इस योजना की जमीनी हकीकत।
1: मेरा नाम दिनेश्वरी सोरी है, ग्राम धनडोंगरी, पोस्ट धनडोंगरी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। और प्रमुख नाम है जयसर जयपुर हरे। जो मैं लेखापाल हूँ और मोर ग्राम संगठन के नाम है नई किरण। जो मैं व्यवसायिका हूँ और संघ संगठन के नाम है भूमिका क्लस्टर। जो मैं एफएनएस डब्ल्यू के मास्टर ट्रेनर हूँ और एक साथ साथ में है लखपति दीदी बने बार बहुत कार्य करे हूँ सर। जो मैं मोला लाभ मिला थी से और साथ ही साथ मोर आजीविका के साधन भी बढ़ा दी से। सबसे पहले तो मैं यहाँ समूह में आए बाद में और यहाँ सब बने बाद में मशरूम के ट्रेनिंग ले सर, मशरूम के ट्रेनिंग ले हूँ और वहाँ से आजीविका करे हूँ। जो मैं क्रोनो काल में मोर मशरूम के चलत रही से गाँव घर में ही मैं यहाँ उगात रही हूँ। और साथ साथ में यहाँ चूड़ी कंगन भी दिया है, मोमबत्ती दिया है, गोबर की दिया है और पूरा सारी जिनिस बनाता चल जो सीजन के हिसाब से चलते एवं पूरा मोर आजीविका है। साथ में मैं मास्टर ट्रेनर के भी काम करती हूँ जिनमें मोला पेमेंट भी मिलती है महीना के 4,000। ऐसे कर करके सर मैं यहाँ अपन बहुत कार्य आगे बढ़ाए हूँ। जिनमें मैं यहाँ लखपति दीदी की श्रेणी में हूँ और मोर घर में अगरबत्ती की मशीन है जिनमें मैं अगरबत्ती भी बनाती हूँ और साथ में सिलाई भी करती हूँ सर। मैं यहाँ मेरे सबसे ज्यादा ना गुलाल चलते हैं सर, गुलाल नहीं बताई हूँ, ये सब मोर आजीविका के साधन है। मशरूम का ट्रेनिंग तो बरगाह सिटी से मिला है सर, उसका GST भी ले हूँ मैं और बाकी जो मोमबत्ती दिया है वो प्रसाद ज्यादा कर सीखी हूँ सर, क्योंकि मुझे आजीविका करना था और आगे भी बढ़नी थी मुझे, इसीलिए ना मैं ज्यादा कर सीखी हूँ क्योंकि आजीविका को आगे बढ़ाना है। क्योंकि RCT में 1 वर्ष ट्रेनिंग लोग, उसके बाद 3 वर्ष तक के वहाँ आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, 3 वर्ष के बाद मिलेगा ट्रेनिंग वहाँ, ऐसा है। मुझे PFME के तहत 30,000 मिले थे सर और अगरबत्ती मशीन के लिए लोन यहाँ से संकुल से ली थी सर 1.5 लाख। महीना का मेरा 20,000 से 15,000 बन जाता है सर, 10,000 खर्चा होता है तो मेरा 15,000 भी बच जाते हैं सर। उसका क्लियर हो चुका है सर, जो मशीन के लिए ली थी ना मैं अगरबत्ती मशीन के लिए, वो क्लियर हो चुके हैं। बहुत अच्छे लगते हैं सर, इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि मैं खुद के पैरों में खड़ी हूँ। हालांकि मेरे परिवार वाले ने साथ दिया है, मेरे मिस्टर जी ने कभी भी मुझे इनकार नहीं किए हैं सर कि यहाँ मत जाओ, यहाँ ये मत करो, वो मत करो, मेरे लिए बहुत ट्राई करके है सर। स्कूटी तो मेरा अभी 3 साल हुआ है, 3-4 साल पहले मेरे पास स्कूटी भी नहीं थी, लेकिन मेरे मिस्टर जी मुझे पूरा साथ दिए। मैं सीखने के लिए यहाँ तक के बताओ डोंगरगढ़ कहाँ पर है, यहाँ राजनांदगांव जिला पर है डोंगरगढ़, और मैं जो निर्मा साबुन, हार्पिक फिनाइल और चूड़ी का कंगन सीखने मैं अंडा गांव मतवारी गई थी एक मैडम के पास मेरे मिस्टर जी के साथ, वो मुझे लेकर जहाँ भी मैं चाहिए ये इसको सीखना है ऐसे करके, मुझे इच्छुक भी थी सीखना है करके, वहाँ वहाँ मेरे मिस्टर जी साथ दिए हैं, ले जाए हैं। और मुझे ये खुशी होती है आज के डेट में क्योंकि अपने खुद के खर्चा मैं उठा लेती हूँ, साथ में अपने बच्चों का भी खर्चा उठाती हूँ और अभी साथ में मैं बीमा सखी भी बनी हूँ सर। बीमा सखी बनी हूँ ना सर, तो अभी साथ में मेरे किसी बच्चे क्या मेरा भी किसी का बीमा नहीं था या मेरे मिस्टर जी का, तो उसके साथ साथ में आय और ज्यादा हो गया बीमा सखी बनने से, तो अभी मैं सभी बच्चे का और मेरे मिस्टर जी का मैं बीमा करवा ली हूँ LIC में। हालांकि मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरे माँ बाप के यहाँ उतना हैसियत नहीं था इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई सर, लेकिन मेरे बच्चे जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, मैं उनके हिसाब से मैं उनको करूंगी, क्योंकि अपने हिसाब से मैं बच्चों को थोपूंगी और उसका मन दूसरे में लग जाएगा, उससे अच्छा है उनके हिसाब से चलो। और बड़ी वाली बेटी का तो इच्छा है कि वो IPS करे सर। मैं अगरबत्ती का जो मशीन है उसको ना 2-3 आगे और बढ़ाना चाहती हूँ, मतलब ये मेरा सोच है सर कि मैं जो कर रही हूँ वो दूसरी दीदी भी करे या तो फिर मैं दूसरी दीदी को रोजगार दे सकूँ। फिलहाल तो महिलाओं को मैं ये सूचना देना चाहती हूँ सर, क्योंकि महिलाएं किसी से कम नहीं है, अगर महिलाएं अगर ठान ले तो हर मुश्किल से मुश्किल काम को वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी हूँ, महिलाएं भी आगे बढ़ सकती हैं, वो भी कार्य कर सकती हैं, क्योंकि सरकार ने ऐसे योजना निकाले हैं जो महिलाओं को आज अपने काम अब खुद के करियर के लिए कर सकते हैं, खुद के अपने लिए आवाज उठा सकते हैं, तो आगे अपनी आजीविका बढ़ाने से अपना खुद का मान सम्मान बढ़ता है, परिवार का मान सम्मान और अपने नाम से जाना जाते हैं। इस हर महिलाएं वो आप काम करें जो उनको इच्छा है काम करने के लिए। सरकार का योजना जो निकाली है लखपति दीदी बनाने के लिए, ये बहुत अच्छी योजना है जो दीदी को आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा योजना दिए है। इससे दीदी अपने घर के आय के स्रोत बढ़ा सकती है, खुद की अपनी जो है मान सम्मान आगे बढ़ा सकती है और अपने नाम के साथ अपने परिवार के नाम को साकार कर सकते हैं।

0: लखपति दीदी योजना आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की एक नई पहचान बनकर उभरी है। लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की वो सदस्य होती हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक 1,00,000 रुपए या उससे अधिक की वार्षिक घरेलू आय अर्जित की हो। ये महिलाएं अपने समुदायों में आदर्श के रूप में काम करती हैं, जो प्रभावी संसाधन और उद्यमिता की शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। इस तरह एक लखपति दीदी कई महिलाओं की प्रेरणा बनकर काम कर रही हैं।
1: मोर नाम कुसुम साहू, ग्राम रामोटोला, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोर समूह नाम है कमाक्षी, ओखर में अध्यक्ष हूँ। और मोर ग्राम संगठन के नाम है नव संस्कार, और मोर संकुल के नाम है भूमिका संकुल संगठन। ओकर अंतर्गत मैं फलचार की काम करती हूँ। और जब मैं समूह में जुड़े हूँ तब मोर आर्थिक स्थिति खराब रही से, लेकिन अभी मैं समूह में जुड़े एक बार लखपति दीदी बन गई हूँ। और जैसे कि पहली समूह में नहीं रही हूँ तो हमन हाँ बाहर से ऋण लेते रहे तो ज्यादा परसेंट में ब्याज में मिलत रही से सेठ साहूकार ने, लेकिन समूह जुड़े के बाद हमन ला बैंक से, समूह से, ग्राम संगठन से ऋण मिल जाते कम परसेंट ब्याज में, जिन्हें हम हाँ अपन आजीविका अच्छा से करके अपन आर्थिक स्थिति सुधारे हैं। और हमारे सालाना के 1,00,000 महीना हो गए हैं, जेकर हम हाँ माध्यम से लखपति दीदी बनी हैं। और लखपति दीदी में जुड़े के बाद हमला बहुत सारा ट्रेनिंग मिली से, ओकर माध्यम से भी हम हाँ अपन आजीविका आगे बढ़ा हैं। और आर्थिक स्थिति में सुधार ऐसे हमला कैसे टाइप से रहना है, कैसे

अपन घर मेंटेन करना है। पहले तो अपन खुद से कुछ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अब अपन से खुद अपन आजीविका करके काम करके हम हाँ बहुत सारा घर परिवार बाल बच्चा मन के सबके सपना पूरा कर सकत हन। और जैसे कि मैं लखपति दीदी बने से जैसे जेकर आय 1 लाख से ज्यादा है ओला लखपति दीदी में शामिल कर सकते। और जो उद्यमी महिला है ओला लखपति दीदी के माध्यम से ट्रेनिंग के माध्यम से लाभ मिलते। पहली तो मतलब ना छोटे रूप में रही थे मोर ऑनलाइन सेंटर है तो पैसा वैसा भी कम पड़े तो ब्याज में नहीं ला पा रहे हम ऋण के माध्यम से अपन दुकान लागे बढ़ा है। जैसे कि फोटो कापी मशीन वगैरह बहुत सारा दुकान लगी बना है इसके माध्यम से कम ब्याज में ऋण लेके। और सिलाई भी करता हूँ ओकर भी मोला थोड़ा से सुविधा मिली से लखपति दीदी के माध्यम।

छत्तीसगढ़ में लखपति दीदी योजना महिलाओं के लिए खुशी का पैगाम लेकर आई है। ये योजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा रही है। इससे प्रदेश की महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। लखपति दीदियां अब अपनी आय से घर का खर्च, बच्चों की शिक्षा और भविष्य की योजनाओं का खर्च स्वयं उठा रही हैं। इनकी सफलता से अन्य महिलाएं भी प्रभावित हो रही हैं और अपने जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए उत्सुक नजर आती हैं। लखपति दीदी योजना से सामाजिक स्तर में भी परिवर्तन हो रहा है।

महिलाओं के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने जितनी भी योजनाएं लागू की हैं, उनमें लखपति दीदी योजना सबसे महत्वपूर्ण है। इससे महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। पहले जो महिलाएं केवल अपने घरों तक सीमित थी, आज वे खुद का काम संभाल रही हैं और समाज में अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। इस कार्य ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है।